आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के बैसाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई 2026। सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता VD सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले

0: में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। आज का विचार में आइए सुनते हैं मन की प्रसन्नता विषय पर विचार। वाचक स्वर श्री यशपाल सिंह राठौड़ का है।
2: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है वहीं उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं। प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल और सफलता भरे अवसर हों, तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं, कोई भी पर्व हो खुशियों का वो दुख ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मनागन घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है।

0: भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।
1: मन की प्रसन्नता विषय पर था आज का विचार। वाचक स्वर यशपाल सिंह राठौड़ का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप एपिसोड नंबर 32 सुनेंगे।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। सवेरे 7 बजे सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। आठ बजकर 30 मिनट पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिंदी कहानी रोमांचक मुकाबला। कहानीकार होंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार चमोली। 9 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। दिन में 12 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे रूपक ग्रहण। लेखक होंगे श्री राजानंद भटनागर।

महिलाओं के लिए महिला जगत का समय दिन में 1:05 रहेगा। चर्चा के विषय रहेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने को सरल उपाय, विटामिन डी और धूप का महत्व, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, प्राचीन कलाकृतियों का संरक्षण, रसोई की बातें और ब्यूटी टिप्स।

युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण संध्या 5:05 पर होगा। आज की बात का विषय रहेगा सोशल मीडिया और सूचना की विश्वसनीयता। लघु जानकारी सुनिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में, साथ ही बैक्टीरिया, गर्मी का मौसम और सावधानियों के साथ गीत संगीत। संध्या 6:05 पर सुनेंगे फिल्म संगीत। एक ही गीतकार

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय इस सप्ताह के कृषि कार्य, नैनो यूरिया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जल संसाधनों का उपयोग और संरक्षण और लोकगीत।

फिल्म संगीत आप सुनेंगी रात 8 बजे और 9 बजे, 9:15 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम रहेगा 9:30 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में कुछ चुनिंदा गजलें।

0: ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: किसान भाई रावरा, आज अपन हथेई करा दूध क्रांति माथे, श्वेत क्रांति माथे। आ भारत री फूट री योजना जो कि भारत में दूध री कमी ने दूध करंट ही शुरू हुई सा। इरी लांठी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई। डेयरी उद्योग ने बढ़ावा देवन खातर दूध और दूध से बनोड़ी चीजा ने फूट री ओळखाण करावण ताई अपनी खेती बाड़ी हुई जरूरी एक श्रेणी चीज है सा। जकेर मायने दूध रो उत्पादन, दूध रे माथे प्रसंस्करण और बिरी खुदरा बिक्री बढ़ावण ताई होने वाला हगड़ा काम श्वेत क्रांति रे मायने शामिल है सा। आपां से गाय भैंस भेड़ बकरियां ऊंटनी राखा जका दूध व्यवसाय ने आगे बढ़ावण रो काम करे। जे आपां बात करा श्वेत क्रांति री तो भारत रे मायने 1970 रे माय जकी शुरुआत हुई। बिर मायने दुनिया रा सब मानी जुड़ा जका ई विकास कार्यक्रम रा धनी हा जका ई श्वेत क्रांति रो नेतृत्व करो बे हा डॉक्टर वर्गीस कुरियन घना साधुवाद रा पात्र है सा। क्योंकि आपणी असली ओळखाण श्वेत क्रांति रे बदौलत दुनिया रे मानस पटल पर देखण ने मिली। दूध री कमी झेल रियो देश दुनिया में सब ज्यादा दूध उत्पादन करने वालो भारत बन गयो सा। खेती फूट री बात है। आ एक फूट री शुरुआत जकी क्रांति रो नाम श्वेत क्रांति एवं भारत में दूध रो उत्पादन बढ़ियो, दूध जुड़ा उद्योग पनप्या, लोगों ने रोजगार मिलियो। कहन रो मतलब पशुपालन जरूरी या खेती बाड़ी जरूरी हर पहलू ने एक क्रांति रो काम करियो सा। और दूध क्रांति भारत री एक फूट री ओळखाण जकी री शुरुआत में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड री स्थापना हुई। ई बोर्ड जको आपरे किसान रे कल्याण रे खातर दूध पालक रे कल्याण रे खातर जको काम करे वो क्यों इशानो नहीं ऐसा। आजादी रे पछे देश रे ग्रामीण क्षेत्र में लगो लग विकास हुयो और वो विकास जरूरी भी हो सा। ई क्रांतियों दूध उत्पादन रो क्षेत्र बढ़ियो। आने वाला 40 साल में 20 मिलियन मैट्रिक टन सू सियाणा लोग बतावे की 100 मिलियन मैट्रिक टन दूध रो उत्पादन शुरू हो गयो। इरे लारे आपा सगला किसान भाई रा पशुपालक भाई रो योगदान ऐसा। ई क्रांति रे माय देश रे किसान री ज्यादा ज्यादा जानकारी हासिल हुई वो ई दूध व्यवसाय रे खातर आगे बढ़े और प्रोत्साहित हुयो। ई काम ने बड़े कोड और हरख रे आगे अपनायो और आपने ऐसा घना ही डेयरी उद्योग जका दुनिया रे पटल माथे पहचान रखे। और आज भारत भी क्रांति री बदौलत दुनिया में हगला ऊंचोखो फूटो लांठो शानदार जानदार एक देश बन गयो जको दूध उत्पादन रे मायने शिरमोर है सा। श्वेत क्रांति भारत में गरीबी दूर करने रो भी एक काम करो जके बहुत से लोग ऐसा है जका ने रोजगार मिले और व्यापारी रोजी रोटी कमा रहे दूध पालन रे क्षेत्र में आगे बढ़े। ऐसा घना ही कामकाजी वर्ग परिवार जका सरकार की अनुदानित राशि ले रही उद्योग ने आगे बढ़ायो। थोड़ी जे बात डेयरी उद्योग री करा तो भारत आज सब मोटो और आत्मनिर्भर उद्योग बनाए डेयरी री पहचान रखे सा। श्वेत क्रांति री शुरुआत 1970 रे मायने और समापन 1996 में। इरा जानकार लोग तीन चरण बतावे। शुरुआत तो जो को प्रथम चरण है वो 1970-1980 ताई और दूसरो जो को चरण है वो 1981-1985 ताई। तीसरो और फूटरो जो को समापन रो दौर हो वो 1986-1996 ताई। इन दौरान भारत रे उद्योग जगत में एक फूटरो नाम जो डेयरी उद्योग या दुग्ध पालन जुड़ा व्यवसाय बैसा में आया। बेरे मायने आपानो जो पशुधन है वो निरोग रियो और आगे बढ़ियो। लोग तरह तरह रा उद्योग जुड़ा काम करन दूध पालन रे क्षेत्र में आगे बढ़े और पशुपालन री दशा सुधरी। तो आप सगला रो फर्ज बने कि बताऊ बता आप पशुपालन रखा फिर भी क्रांति री जकी बतावड़ी बात और क्रांति रे जगह कदम आ मारे नक्शा कदम पर चला और इन धंधे ने आगे बढ़ावा फला फूला और ये खेती बाड़ी में जुड़ रहे और दूध पालन व्यवसाय जुड़ रहे फायदा उठा।
0: श्वेत क्रांति, इस बारे में जानकारी दे रहे थे श्री रामस्वरूप विश्नोई। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा

0: देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडावार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बजे हैं, सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सकारात्मक उद्देश्य और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से अगर हम करते हैं तो हमारा स्वस्थ तन, सजग मन और सकारात्मक सोच एक सुरक्षित, सुखद और सुंदर शुरुआत की पहचान बनती है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्वस्थ जीवन का यही आधार जागरूकता से होगा हर रोग पर वार। जी हां श्रोताओं, आज 18 मई को विश्वभर में एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस उन वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों के समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के विरुद्ध वैक्सीन खोजने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्रोताओं, एड्स केवल एक बीमारी नहीं बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता और मानवता की परीक्षा भी है। सही जानकारी, समय पर जांच और सुरक्षित जीवन शैली से इस बीमारी से बचाव संभव है। ज्ञान ही सुरक्षा है, जागरूकता ही बचाव है। स्वस्थ समाज की ओर बढ़ना हम सबका साझा स्वभाव है। श्रोताओं, मानवता को यही संदेश देना है कि भेदभाव से रही दूर, प्रेम, सहयोग और जागरूकता से जीवन बने भरपूर। जी हाँ श्रोताओं, एचआईवी एड्स के प्रति जो भ्रांतियां फैली है उन्हें आज दूर करने की आवश्यकता है। ये बीमारी छूने से, साथ बैठने से या फिर भोजन साझा करने से नहीं फैलती। हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी जागरूकता की ओर ध्यान दें और लोगों को जागरूक करें। एड्स वैक्सीन दिवस हमें ये संदेश देता है कि विज्ञान और मानवता मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आवश्यकता है जागरूकता, संवेदना और सकारात्मक सोच की, एक ऐसे विश्वास की जब हम एक स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सुरक्षित और स्वस्थ समाज बनाएं, भेदभाव नहीं

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, पुरानी वस्तुएं, पुरानी चीजें जिनसे हमारी यादें जुड़ी होती है, सदा हमारा लगाव उनसे रहता है। अब देखिए ना, किसी भी संग्रहालय में अगर हम प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं हमसे संवाद कर रहा हो। पुरातात्विक वस्तुएं, प्राचीन पांडुलिपियां, लोक कला, चित्रकला और विरासत की अनेक धरोहरें हमने अपनी जड़ों से जोड़ने लगती है। जी हाँ, जहाँ इतिहास मुस्कुराता है, जहाँ संस्कृति स्वर पाती है, हर संग्रहालय की दीवार एक नई कहानी सुनाती है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस। ये दिवस जिसका उद्देश्य है संग्रहालय के महत्व को समझना और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचित कराना। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं होते श्रोताओं, बल्कि वे इतिहास की जीवंत साक्षी, संस्कृति के संरक्षक और ज्ञान के अमूल्य केंद्र होते हैं। बीते कल की अमूल्य कहानी संग्रहालय की जुबानी, संस्कृति, कला और इतिहास का मान, यही है हमारी पहचान। जी हाँ श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजें, संग्रहालयों से जुड़ें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व से परिचित करवाएं, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है वही भविष्य को भी बेहतर बना सकता है।

श्रोताओं, राजस्थान की अनमोल धरोहर, मरुभूमि की पहचान, प्रकृति की शान, वन्य जीव का संरक्षण और गौरव गोडावन। जी हाँ श्रोताओं, गोडावन केवल एक पक्षी नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, प्रकृति और जीव विविधता का जीवंत प्रतीक है। अपनी लंबी गर्दन, शानदार चाल और विशाल पंखों के कारण इसे मरुस्थल का गौरव कहा जाता है। रेत के विस्तार में प्रकृति की मुस्कान है, गोडावन राजस्थान की सच्ची पहचान है। जी हाँ श्रोताओं, एक समय था जब राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गोडावन दिखाई देते थे, लेकिन बदलते पर्यावरण, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के कम होने के कारण आज ये पक्षी विलुप्ति की कगार तक पहुंच चुका है। आवश्यकता इस बात की है श्रोताओं की राजस्थान की संस्कृति, मरुधरा प्रकृति जहाँ सौंदर्य की प्रतीक है, तो गोडावन का नाम बड़े ही गर्व से यहाँ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये पक्षी हमें सिखाता है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे, तभी ये सुंदर जीव बचेंगे। धरती का श्रृंगार है ये, प्रकृति का आधार है ये। श्रोताओं, आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति को बचाएं, पेड़ लगाएं। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

आकाशवाणी ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सवेरे 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में अभी आपने आज का पंची फिल्म का ये गीत सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म अमृत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन

0: 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले

0: आरोपी की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरेंज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic

में अपने नए नए डैनों को फैलाकर अपनी परवाज दिखाने लगे हैं। विश्वविद्यालय में 2-3 महीने नए और पुराने पंछियों में अब कोई फर्क कर पाना बेमानी सा था। यानी विश्वविद्यालय की अजनबियत नए विद्यार्थियों के दिमाग से खोने लगी थी। 3 महीने बाद आज यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। कई पुराने विद्यार्थियों के साथ प्रथम वर्ष में देहात से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए नव प्रवेशित 2 विद्यार्थी अरुणिमा और राजवीर भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात भी विश्वविद्यालय में पहले दिन फीस जमा करवाते हुए आपसी तकरार से हुई थी। ये भी संयोग ही था कि दोनों एक ही कक्षा में एक ही सेक्शन में थे, और ये भी संयोग ही था कि विगत 3 महीनों में दोनों ने ही अपने साथियों और शिक्षकों के बीच अपनी स्मार्टनेस से एक स्थान बना लिया था। प्रतियोगिता में दोनों आमने सामने थे, अरुणिमा पक्ष में थी, राजवीर अपने स्थायी बागी तेवरों के साथ विपक्ष में। प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी प्रतिभागी चिल्ला चिल्ला कर अपने पक्ष को सही और विपक्षी को गलत बता रहे थे। तर्क बुद्धि का वह पक्ष है जो गलत को सही और सही को गलत कर सकता है। दरअसल इस प्रतियोगिता के मायने भी यही होते हैं। खैर, इस तर्क वितर्क और कुतर्क के माहौल में बोलने की अदा का भी अपना महत्व था। प्रतियोगिता पूर्ण हुई, परिणाम जजों के हाथ में था, जीत राजवीर की हो चुकी थी। अरुणिमा ने खुले मन से राजवीर को बधाई दी। इस बधाई ने दोनों के बीच की पहले दिन की तकरार के बाद आई चुप्पी को समाप्त कर दिया। दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी इस बोलने की कला पर विश्वविद्यालय की कुछ पारखी नज़रों ने पहचान लिया है। परिणाम ये कि दोनों विश्वविद्यालय के संघों के अलग अलग खेमों के सदस्य हो चुके थे। विश्वविद्यालय में वर्ष का सबसे गहमा गहमी वाला समय शुरू हो गया। बहुत से पुराने छात्र नए छात्रों से संपर्क साध रहे थे। राजवीर और अरुणिमा अब पूरी तरह से अपनी संघों के लोगों के बीच रहने लगे थे। विश्वविद्यालय में चुनाव हो गया, एक मुख्य पद अरुणिमा के दल को मिला तो छोटे मोटे पद राजवीर के दल के लोग जीत गए। जिनको पद मिले वो आम से खास हो गए। इन चुनावों की खास बात यह थी कि दोनों दलों को एक एक अच्छा वक्ता अरुणिमा और राजवीर के रूप में मिल गया था। विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर सब नए अब पुराने हो चुके थे। उनके पहनावे, हाव भाव, वेशभूषा, बातचीत के तरीके और खान पान की आदतें पर्याप्त मात्रा में बदल चुकी थी। गवई संस्कारों पर शहरी ठप्पा लग रहा था। समय बीतता गया, दूसरे वर्ष के चुनाव भी हो गए। दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता हर क्षेत्र में परवान पर थी। प्रेम के मामले के जानकार लोग उन दोनों के तमाम अंतर विरोधों के बीच पनपती हुई केमिस्ट्री को समझने का प्रयास कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों के बीच कुछ था जो दोनों एक दूसरे से नहीं कह पा रहे थे। आखिर इस अबोले को तोड़ने की पहल राजवीर ने की और एक शाम कॉफ़ी हाउस में मिलने का फैसला किया। अरुणिमा कुछ खास किस्म से तैयार होकर आई थी। काफ़ी सर्व होने के बाद दोनों कॉफ़ी टेबल पर आमने सामने बैठे थे। अपनी कप पर उठी हुई झाग को कॉफ़ी के साथ मिलाने के लिए चम्मच से हिला रहे थे। मौन पसरा हुआ था, कुछ कहना चाह रहा था पर दोनों के मन में उठे हुए झागों को हिलाने का चम्मच उनके पास नहीं था। राजवीर ने अचानक ऊपर देखकर मौन को ख़त्म करने का प्रयास किया और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। फॉर वाट? मेरे बुखार के समय की बात कर रहा हूँ। ओह, वेरी नाइस, मुझे यही कहने के लिए बुलाया है। तुम हर बात में टॉन्टिंग मोड पर क्यों आ जाती हो? जस्ट लिव दिस। वाई लिव? नहीं, बात तो पूरी होगी। हमें एक दूसरे के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि नहीं? आई डिडोंट वांट डिबेट नाउ। देन वाट डू यू वांट नाउ? ये तो बताना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे के थैंकफुल होना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स होना चाहिए। तब तो थैंक्स टू यू फॉर ए कॉफ़ी। तुम अब हद कर रही हो। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ किस लिए बुलाया? लड़ाई करने के लिए? नहीं तो, बस बहुत दिन हो गए थे तो कुछ कहो। मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, बस चुनाव का माहौल है। तो अब हो गया मैं जाऊँ? इतनी भी क्या जल्दी है, कहीं और चलें? किस लिए? बस यूं ही बात करने के लिए। वो तो यहाँ भी हो सकती है। अच्छा, ओके। फिर दोनों के बीच मौन आकर लेट गया। इस बार मौन लंबा हो। दोनों ने एक साथ दूसरे का नाम लिया, मुस्कुरा गए। अरुणिमा ने शुरू किया, पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो बंद है, चुनाव के बाद लगेंगे। तुम्हारी पढ़ाई? बस तुम्हारी ही तरह। एक बात कहूँ? सुनने ही तो आई हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर राजवीर ने कहा, लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं क्या? गलत सही की बात नहीं है। तो फिर क्या जो लोग कह रहे हैं वह क्या सही है क्या? तुम भी ना लड़कियों से भी आगे हो। तुम्हें सब मालूम है और कहने में हिचक रहे हो। हाँ हाँ, हम तो हिचक रहे हैं, पर तुमने तो बोल दिया ना। हमने भले ही नहीं बोला हो पर समझा तो दिया था।
किसको एक

0: दुगो, यानी कि तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि यू लव मी, और मुझसे यह सुनना चाह रहे हो कि आई लव यू। बिल्कुल सही। क्या सही, फिर कहो आई लव यू टू। विश्वविद्यालय के कैंपस में चलने वाली ऐसी अनेक प्रेम कहानियों में एक और प्रेम कहानी जुड़ चुकी थी। दोनों की जोड़ी को लोग स्वीकार कर चुके थे। साल दर साल बीतते गए। राजवीर अरुणिमा अपनी स्नातक पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय में अधिस्नातक के विद्यार्थी हो गए थे। पढ़ना और चर्चा करना दोनों का शगल था। अपने अपने संघों के समूह में वे अग्रिम पंक्ति के लोग थे। विश्वविद्यालय में फिर चुनाव होने थे। दोनों संघ चेहरे ढूंढ रहे थे, पर निर्णय अटक रहा था। इन सबसे दूर यह प्रेमी युगल अपने प्रेम में खोया, अपने आप को राजनीति से अलग रखना चाह रहा था। राजवीर अपने संघ की बहुत ही गोपनीय बैठक में था, जहाँ इस साल के लिए उम्मीदवार के बारे में चर्चा होनी थी। मीटिंग में राजवीर के नाम पर सहमति बनी। राजवीर ने सोचकर बताने को कहा। राजवीर ने कुछ दिनों का समय मांगा, मीटिंग से वापस आ गया। अजीब दुविधा में था। संघों और प्रेमधार के बीच एक अजीब अंतर्द्वंद चल रहा था। इधर अरुणिमा की विचारधारा के समूह में अरुणिमा अब मुख्य लोगों में थी। चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय की जानी थी। बैठक रखी गई, अरुणिमा को उम्मीदवारी के लिए चुना गया, पर दबी आवाज में यह चर्चा भी थी कि उसका प्रेम प्रसंग राजवीर से चल रहा है। वह भी अजीब द्वंद में चली गई। पहले वह राजवीर से बात करना चाहती थी, वह समय मांग रही थी, तो पार्टी के लोग नाम की घोषणा की जल्दी में थे ताकि विगत वर्ष की जीत को दोहराया जा सके। दोनों अजीब सी हुआ पाव में उलझ गए। अरुणिमा ने फ़ोन कर राजवीर से मिलने की इच्छा जाहिर की। दोनों के बीच तय हुआ अभी मिलना है। कॉफ़ी हाउस में अरुणिमा पहले से बैठी थी। राजवीर अपने चेहरे पर आई परेशानी की रेखाओं को छिपाने में असफल रहा। अरुणिमा ने उसकी कसमसाहट को महसूस आ पूछा कि कोई परेशानी है, घर में सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, राजवीर ने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। अरुणिमा ने छेड़ना उचित नहीं समझा। राजवीर अपनी परेशानी बताकर अरुणिमा को परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद प्रेम के पंछी प्रेम के आसमान में कुलांचे भरने लगे। राजवीर सदा हुआ अभिनय कर रहा था। देर से ही सही, दोनों मुद्दे पर आ गए। अरुणिमा जो बताया वह राजवीर के लिए अप्रत्याशित था। राजवीर ने भी बता दिया कि उसकी पार्टी में वह प्रत्याशी चुना गया है। दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ना मतलब एक दूसरे से अलग होना। एक बार तो दोनों ने ही अपने आप को चुनाव से अलग रखने का प्रस्ताव रखा, पर सब तय हो चुका था। पीछे हटना मतलब कमजोरी, आगे बढ़ना मतलब अजीब सी कसमसाहट में दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की। दोनों के बीच मौन टूटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों रेस्तरा से बाहर थे। ऑटो में दोनों साथ बैठे हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। सड़क और गाड़ियों का शोर था। दोनों के बीच मौन पसरा था। अरुणिमा ने मौन तोड़ते हुए कहा, यहाँ से हमें अलग हो जाना चाहिए। राजवीर ने ऑटो रुकवाया। अरुणिमा वहीं उतर गई। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं कही। विश्वविद्यालय के पार्क ही इसे समझ रहे थे। मीडिया के लिए मुकाबला रोचक और रोमांचक बन चुका था। विश्वविद्यालय पोस्टर, नारे, वादे, इरादे के साथ तमाशबीन बना इस रोचक और रोमांचक मुकाबले को देख रहा था। राजवीर और अरुणिमा का दोस्त भी आशंकित थे कि क्या यह मुकाबला दोनों के बीच चलने वाली बहसों की तरह होगा या उससे अलग होगा। खैर जो भी हो, एक हारेगा और एक जीतेगा, ये तो तय है। पर इन सब के बीच दोनों के मध्य चला प्रेम जीत पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी रोमांचक मुकाबला। कहानीकार थे डॉक्टर प्रमोद कुमार चमोली।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। सवेरे के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार तरंग सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से रिले।

0: उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सीमाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहाँ के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।
0: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे चार जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT के माध्यम से होगी।
3: CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में NTA को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। श्री बैरवा ने मीडिया

0: आपस से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिससे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: तो राम जल सेतु परियोजना है, उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है, देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
3: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और उद्धार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हुए।

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
1: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ में।
0: जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी, सत्यापित गाइडों की सूची और आपातकालीन मदद मिल सकेगी।

0: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज़्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर उपलब्ध हैं।
1: यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
2: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत तो ही है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
1: वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
3: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
1: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष लगभग 520 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: समाचार तरंग में बस इतना ही। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रामनाथ मीना।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। कुछ ही देर में यानी 9 बजे आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने

0: दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे, सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए विचार विमर्श हुआ। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री रहा, जिसे दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के साथ संबोधित किया। प्रदेश में लोगों को जल संचय और मकानों तथा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे जल संग्रहण कर बरसात के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गांवों तक लोगों और प्रशासन की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन और दलहन के तहत ये राशि मंजूर की गई है। योजना के तहत राज्य में 70,000 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा और किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने बताया कि बीज वितरण और फसल प्रदर्शनों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 51,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ये राशि डीबीटी की जा चुकी है। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
1: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम पुस्तला का रहने वाला हूँ और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरे 4 एकड़ जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूँ और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: पाली जिले में जनजातीय समुदायों के विकास के उद्देश्य से आज से पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि ये अभियान 25 मई तक चलेगा। जिले की

0: दूर दराज की ढाणियों और गांवों में आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से 21 से 23 मई तक जनसुनवाई होगी। वहीं संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। कल 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रहा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पारे में 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में आज से 22 मई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है।
1: पिछले एक सप्ताह से हीटवेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं पे नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर है। विशेष रूप से मई के महीने में जो थार रेगिस्तान क्षेत्र और आसपास का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें जो हवाओं का पैटर्न है, खासकर जो सतह की हवाएं हैं और ऊपरी वातावरण की हैं, इसमें एक एंटीसाइक्लोनिक चक्रवाती, यूं कह सकते हैं प्रति चक्रवाती तंत्र बनता है और इसी के असर से सरफेस पर हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल पिछले एक वीक से ये एक टिपिकल हीट वेव का स्पेल जारी है और अभी भी अगले एक सप्ताह 10 दिनों तक ये हीट वेव का स्पेल खासकर डेजर्ट क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है, इसमें जारी रहने की संभावना है।
0: चूरू जिले के मानपुरा में एक खेत में बनी झोपड़ी में आग लगने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। वहीं दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पनियाला के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर अम्बाला हाईवे पर एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में देशी विदेशी सैलानियों और आमजन को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वहीं पर्यटकों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाएगा। संग्रहालय दिवस के अवसर पर पाली में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसलमेर में भी थार हेरिटेज म्यूजियम में विरासत संरक्षण पर विचार गोष्ठी रखी गई है। रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज विशेष रेलगाड़ी चलेगी। ये विशेष रेल सेवा एक दिन के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन आज सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर करीब 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इसका मंडोर, ओसिया और फलौदी सहित सभी निर्धारित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सवाई माधोपुर में नई वंदे भारत ट्रेन की गति का परीक्षण पूरा किया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलगाड़ी को कोटा मंडल के विभिन्न मार्गों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर परखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गोथेनबर्ग में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रदेश में 2,60,000 किसानों को दलहन और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए 135 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। राज्य में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी के तेवर फिर से तीखे। सीमावर्ती जिलों में आज हीट वेव की संभावना। और विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए अब्दुल गनी के गाए लोकगीत।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून।

0: बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता।
1: जी।
0: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
0: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
1: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
0: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
0: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
1: गांव गणेश धाम परसुली, पोस्ट खेरता, बाजार जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
0: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी।
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now

0: So, children, here is something to do for you. Okay?
1: Okay.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir. It will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir!
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
5: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
5: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं।

0: ये जनजातियाँ मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
1: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
0: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के

0: साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। FM पर आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: रंग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादू।

तुई माइक और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: कर तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन्ना रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अपने प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप एफएम पर सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

जुबिन नौटियाल और ज़ारा एस खान की आवाज़ों में आपने लव यापा फिल्म का ये गीत सुना। गीत को लिखा था गुरप्रीत सैनी ने, संगीत था तनिष्क बागची का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राघव और अर्जुन और राघव चैतन्य की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वेदा। गीत और संगीत है राघव और अर्जुन का।

अरिजीत सिंह की आवाज में मेट्रो फिल्म मेट्रो इन दिनों फिल्म का गीत आपने सुना। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था प्रीतम का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 11 बज रहे हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोलते आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है यादों की बारात। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना यादों की बारात फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में आदमी और इंसान फिल्म का गीत आपने सुना। गीत को लिखा था साहिल उद्यानवी ने, संगीत दिया था रवि ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने।

आराधना फिल्म का गीत आपने सुना था मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था एस टी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आमने सामने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अमर प्रेम। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है आर डी बर्मन का।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आंधी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है आपकी कसम। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपकी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आरडी बर्मन का। भूले बिछड़े गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है अभिमान। गीत के बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत है एस डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आर अभिमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत था एस डी बर्मन का। भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आरजू। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए आरजू फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 115.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में दिन के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के

0: महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे नाटक ग्रहण। लेखक होंगे श्री राजानंद भटनागर। इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से।

महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के सरल उपाय, विटामिन डी और धूप का महत्व, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस, प्राचीन कलाकृतियों का संरक्षण। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा सोशल मीडिया और सूचना की विश्वसनीयता। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, बैक्टीरिया, गर्मी का मौसम और सावधानियां जैसे विषयों पर।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, नैनो यूरिया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जल संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पे जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

शाम 7:45 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गजलें आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। रात 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे नाटक ग्रहण। लेखक हैं श्री राजानंद।

0: अंजलि, मेरा कुर्ता पायजामा कहाँ है?
1: अरे छत पर सूख रहे हैं। और सुनो, दूसरे कपड़े भी उतार लाना।
2: अरे तू रहने दे बेटा, मैं उतार लाती हूँ।
0: तुम कहाँ चढ़ोगी सीढ़ियाँ माँ, मैं ले आता हूँ।
1: बहू जी, माँ जी,
2: चाय के साथ भुजिया भी दे देना सुधीर को,
1: पार पड़ जाएगी खाली भुजिया से।
2: अरे परांठे भी तो रखे हैं कटोरदान में, मेरा मतलब है भुजिया के साथ खा लेगा।
3: ठीक है, तोरे कारण धोबी बन जाऊंगा।
0: ये कपड़े कहाँ रखने हैं?
2: वहाँ बरामदे में पड़ी खाट पर डाल दे। अच्छा। बाद में छांट लूंगी मैं।
0: ठीक है,
1: चलो अब चाय पी लो।
0: तुम लोगों ने पी ली?
1: क्यों, दोबारा पीने पर बैन है क्या? माँ जी, आपकी चाय मेज पर रख दी है, आप भुजिया लीजिएगा।
2: नहीं, तुम लोग लो।
0: कमरे में ले चलो, मैं फ्रेश होकर आया।
1: ठीक है।
0: तौलिया कभी नहीं मिलता गुसलखाने में, गीले निकल कर आओ।
1: कमाल के हो तुम भी। अरे धोकर तो सुखाया था, अभी ऊपर से खुद ही तो लेकर आए हो।
0: ओ, ओ, ओ, खेद है मैडम, कपड़ों की गड्ढमड में पता नहीं चला।
1: ऑफिशियल पत्र लिख रहे हो? खेद है मैडम, दफ्तर को घर चिपका कर मत लाया करो। चलो चाय ठंडी हो रही है,
0: जरा पायजामा पहन लूं। पिताजी क्या घूमने गए हैं?
1: हाँ गए तो घूमने ही हैं।
0: अच्छा तो बैठो, तुम भी भुजिया खा लो।
1: क्या खा लूं सुधीर, बहुत सोचती हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूं, लेकिन तनाव बन जाए दिमाग में तो किससे कहूं तुम्हारे सिवाय।
0: अरे क्या हुआ, स्कूल में कोई गड़बड़?
1: स्कूल

0: में अव्वल तो समस्या उठती रही, और उठे तो हम तीन चार टीचर्स का ग्रुप ऐसा है कि हेडमिस्ट्रेस तक की हिम्मत नहीं कि कुछ कह सके।
1: ओ, वो तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मेरी भी कब हिम्मत होती है, जब तुम्हारी तेवर चढ़ती है या फिर तीसरी आँख।
0: सुधीर मजाक मत करो, अरे स्कूल की राजनीति ताबे आ जाती है, घर में पार नहीं पड़ती। तुम्हारा क्या, तुम तो इधर उधर की बातें बनाकर बच कर निकल जाते हो, पर मैं तो नहीं बच पाती ना। अब तुम्हारे सामने सुबह सुबह अरे माँ जी पिताजी में झिकझिक हुई थी कि नहीं?
1: पता नहीं चला किस बात पर हुई, मुझे दफ्तर की देर हो रही थी, मैं अनदेखा कर निकल गया।
0: मैं जब स्कूल जाने के लिए निकली तो पिताजी अपनी बैठक के दरवाजे के बाहर माँ जी को जली कटी सुना रहे थे।
2: आजकल तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं, कसवा लो। मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सही है, हाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा बर्ताव करती हो जैसे मैं तुम्हारा आदमी नहीं, घर का दो टके का नौकर हूं।
3: अच्छी तरह जानती हूं मैं जिंदगी भर किसने सहा है, तुमने कौन सी पैर की जूती से कम समझा है मुझे। सोचा था बुढ़ापे बेचैन मिलेगा, सो अब भी तास्ते रहते हो। पहले तो कौशल को लेकर मेरी जान चींगते रहते थे, उसने तो किनारा कर लिया, अब मेरे पीछे पड़े रहते हो। हे भगवान, इससे तो मौत ही अच्छी थी।
0: मैं तो स्कूल चली गई, लेकिन दिन भर ऐसा लगता रहा जैसे छाती पर किसी ने पत्थर सा रख दिया हो।
1: मत सोचा करो ज्यादा, बुढ़ापा है, शिकायतों का कुआं, जो अंदर दबा है वही जब तब मुंह खोलता रहता है। कोई हल भी तो नहीं है।
0: लेकिन सुना सुना कर पिताजी तो निकल जाते हैं बाहर या बैठक में घुस जाते हैं। माँ जी बेचारी अकेली दिन भर रोती रहती है, और तो और गुस्से में पिताजी मुझे भी लपेट लेते हैं।
1: बुढ़ापे में मैं भी ऐसा हो जाऊंगा।
0: हंस रहे हो तुम, मेरे साथ ऐसा किया ना तो तुम्हारी कसम जहर खाकर खत्म कर लूंगी अपने आप को।
1: अरे अरे शांत देवी शांत, अभी बुढ़ापा बहुत दूर है, रिटायरमेंट के बाद मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा, मात्र आपकी, देवी अन्नपूर्णा।
0: देवी अन्नपूर्णा, बस तुमसे तो अपनी मिट्टी पलीत करवा लो।
1: ऐसा ना करूं तो क्या करूं, तनाव को और बढ़ाऊं कि घर घर ना रहकर कैद खाना लगे, जहां सांस घुटती रहे, खुशी की हवा बाहरी दीवारों से टकरा कर लौट जाए। पिताजी को कितनी बार टोक कर समझा कर देख लिया, सख्त जवाब मिला या डांट खाई, हमारे बीच में तुझे बोलने की क्या जरूरत है। वो जितना तेरा और इस घर का ध्यान रखती है मेरा रखती है। अभी मैं तुम्हारा दिया नहीं अपना कमाया खाता हूं, तो बोलो ऐसे जवाबों के आगे क्या करूं।
0: हाँ, पर इस लिहाज से तो कौशल भाई साहब और भाभी जी सुखी हैं, उनके पास जाने का नाम नहीं लेते।
1: भाई साहब और पिताजी हमेशा उत्तर दक्षिण रहे हैं।
0: पर माँ जी का जाने का तो बहुत मन करता है ना।
1: हाँ करता है, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकती, तुम समझती तो हो।
0: हाँ,
1: अलग रह नहीं सकते दोनों में से एक भी, बुढ़ापे में यही होता है।
0: बस बस बहुत हो गया, आप जाने दो, और उनके आने का वक्त हो गया है, शाम का खाना तुम्ही को खिलाना है। मैं चाय देने पर डांट खा चुकी हूँ, तुम भी तो जरा चखो।
1: तुम तो हल्की हो गई, टेंशन फेंशन नहीं रहा ना।
0: जी नहीं, अब मैं जा रही हूँ। हो गया ना नुकसान।
3: क्या हुआ बहू, गिर गई क्या? ये मरा घर का कलेश आखिर कुछ ना कुछ नुकसान करता ही है।
0: कुछ नहीं हुआ माँ जी, कब हाथ से छूट गया।
3: देख देख मैंने सब्जी बना दी है, ऐसा कर तू रोटियां सेक ले, अभी आते ही होंगे नाक चढ़ाए।
0: माँ जी आज आप कुछ मत बोलिएगा, अरे ये अपने आप खिला देंगे उन्हें।
3: अरे नहीं खाएंगे रे सुधीर से,

0: मुझे ही झक मार कर जाना पड़ेगा, तब खाएंगे।
1: मैं जी आप भी।
0: हंसती क्या है, देख लेना, काने से मेरी बने नहीं और काने बिना मुझे सरे नहीं। नस नस जानती इस आदमी की मैं, ऐसे ही खून पीते रहेंगे। देख कपड़े छांट दिए मैंने।
1: जी मां जी।
0: बाद में कमरे में ले जाना तू।
1: जी।
0: अब मैं नहाने जा रही हूं, ये बदन पसीने से ऐसा चिपचिपा रहा है कि बस पूछ ही मत।
2: यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि मोरे। उमा राम राम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही।
3: अरे जरा देखना तो सही कौन आया है।
0: होगा कौन, दूध वाला होगा। इतवार के दिन दूध जल्दी लाना चाहिए, सो हमेशा लेट लेके आता है।
4: अरे तुम सुबह सुबह
5: क्यों, आना मना है क्या?
4: इधर आने का मूड जरा कम ही बनता है तुम्हारा।
5: अब बाहर खड़ा रखकर ही बात करेगा या अंदर भी आने देगा?
0: अरे बर्तन लाऊं क्या दूध का?
4: नहीं माँ, मुश्ताक आया है, अंदर आओ।
5: शुक्रिया। नमस्ते मम्मी।
0: अरे बड़ी उम्र हो तेरी।
5: डैडी नमस्ते।
6: नमस्ते नमस्ते, अरसे बाद आए।
5: जी टाइम नहीं मिल पाता, फिर आपका घर भी तो कितने फासले पर हो गया है, हमारे घर से शहर का धुर दूसरा छोर।
6: जमीन जमीन खींचती है भाई, यही बनना था मकान, सो बन गया। और सुनाओ सब ठीक है, बहू बच्चे और तुम्हारी अम्मी जान?
5: जी दुआ है आप सबकी।
3: नमस्ते भाई साहब। अरे आज रास्ता कैसे भूल गए?
5: हाँ जैसे आप तो हर चौथे पांचवे दिन आ ही जाती हैं हमारे गरीब खाने पर।
4: आओ बैठो।
5: मम्मी आप सबको आज हमारे घर आना है, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले आपके यहाँ आया हूँ।
0: क्यों भाई, क्या खास बात है आज?
5: जरीना और शबनम का जन्मदिन है।
0: उनका, जो जुड़वा हुई थी? अरे कितने साल की हो गई?
5: 5 साल की।
0: ईश्वर सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे उन्हें। हाँ हम तो क्या आएंगे, सुधीर और बहू आ जाएंगे।
5: चिंता क्यों करते हैं मम्मी, आप और डैडी आ सकते हैं, हमने आपके खाने के लिए अलग से इंतजाम किया है।
0: कैसी बात करता है, क्यों पहले क्या कभी तुम्हारे घर खाया नहीं? अरे जैसे कौशल सुधीर वैसा ही तो तू है।
4: जानते हो ऐसा क्यों कहता है यार?
5: कहना पड़ता है यार, इसकी वजह भी तू जानता है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, फिर अपना अपना सोच है।
0: नो बहस नो बहस, चाय नाश्ता, बहस नहीं।
5: ओहो सैंडविच, भाई मजा आ गया।
0: रविवार में स्पेशल डे, नो भागम भाग नो चेंज चो। भाई साहब कितने बजे पहुंचना है?
5: 1 बजे तक, वहां मेहमान के पोज नहीं मारने। अच्छा। मेजबान है, डैडी को भी इनवाइट कर दो।
4: कह दो लेकिन आएंगे नहीं।
0: चुप चुप, आ रहे हैं। पिताजी आपको दूध ला दूं या चाय लेंगे?
6: सिर्फ एक कप, ज्यादा नहीं। गिलास भर कर लाती है फिर पूरा पीने की जिद करती है।
5: डैडी आपको और मम्मी जी को भी जरूर आना है।
6: कहाँ, क्या है भाई?
4: इसकी जुड़वा बेटियां जरीना और शबनम का जन्मदिन है।
6: ओह मुबारक हो भाई, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, अपनी माँ को ले जाना।
0: माँ जी तो मना कर रही हैं पिताजी। हाँ अगर आप चलने की हामी भरे तो शायद चली चले।
6: यह भी कोई शर्त हुई? क्यों अलका?
0: हाँ
6: मन हो तो चली जाओ, हमेशा घर में घुटती रहती हो।
0: अरे नहीं सुधीर और बहू चले जाएंगे, हम बूढ़े ठीकरों का वहां क्या काम है। माँ जी आपने नाश्ता कर लिया?
7: कर लिया रसोई में। ऐसा करो बहू,
0: हुँ?
7: तुम ऊपर का काम निपटा लो।
0: जी

0: मैं तब तक हम दोनों का खाना बना लेती हूँ।
1: तो मैं चलूं? अभी और रिश्तेदारों को भी कहना है, तो बंदा आपकी आवभगत के लिए जोड़े से दरवाजे पर हाजिर रहेगा।
0: जी नाटक कम।
1: अब कहां नाटक भाभी, नाटक तो हम और सुधीर तब किया करते थे जब कॉलेज में थे। क्यों रेडी, आप और अब्बा जान देखने आए थे ना कई बार। अब तो नून तेल गैस सिलेंडर सब याद रह गया है अब। तो चलो रेडी मम्मी। तो भाभी जी 1 बजे ऑन डॉट
0: जी,
1: कहीं मेकअप और साड़ी चुनती न रह जाए।

0: नून तेल गैस सिलेंडर सब याद रह गए अब। तो चलने रेडी है मम्मी? तो भाभी जी 1 बजे ऑन डॉट,
1: जी
0: कहीं मेकअप और साड़ी चुनती न रह जाए।
2: अपने बाप की तरह मस्खरा और अलमस्त है।
1: हाँ, जब भी वो आते थे भाभी भाभी की रट लगाकर कान के कीड़े झाड़ देते थे। बेचारे बिना उम्र ही चलती है।
2: सच है, किसको पता कब किसकी बारी आ जाए। वो कबीर ने कहा है ना,
1: देखो जी सुबह सुबह गलत बात मत बोलो, पता नहीं कब की मुंह से निकली कब सच हो जाए।
2: अच्छा भाई अच्छा, नहीं कहूंगा।
3: सुधी तैयार हुए कि नहीं? तुम तैयार होने में कितनी देर लगाते हो?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे।
3: अच्छा चलो चलो
4: चलो।
3: माँ जी हम जाए?
4: पिताजी हम जा रहे हैं।
5: रुको रुको सुधीर, ये लो, यह 21 रुपए
4: जी,
5: मेरी और अपनी माँ की तरफ से दोनों बच्चियों को दे देना।
3: हम लोग दे देंगे पिताजी।
5: ठीक है ठीक है, पुराने ताल्लुक हैं, हमारी तरफ से भी होना चाहिए। और सुनो
4: जी,
5: ज्यादा रात मत करना, शहर जितना लंबा चौड़ा हो गया है उतनी ही वारदातें होने लगी हैं।
1: और सुनो बहू, लौटते वक्त जेवर पर्स में रख लेना।
3: जी माँ जी, हम जाएं?
2: अरे तुम अभी तक नहाई नहीं?
1: नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी। ऐसा करती हूँ, पहले खाना परोस देती हूँ, तुम खा लो।
2: नहीं नहीं, तुम पहले नहा लो। सैंडविच खा लिए थे ना, इसलिए अब ज्यादा भूख नहीं है। और फिर साथ साथ खाएंगे।
1: आज तो बड़ा ख्याल आ रहा है।
2: आजादी है ना?
1: आजादी? कैसी आजादी?
2: तुम तो ग्रस्तनी बनकर बिल्कुल काठ की हो गई हो।
1: और तुम?
2: मैं नहीं हो पा रहा हूं, यही तो मुश्किल है।
1: अच्छा ऐसा करो, बैठक में बैठकर रामायण पढ़ो, तब तक मैं नहा लेती हूँ जल्दी से, मुझे भी भूख लग रही है।
2: पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, तुमसे दिल खोलकर बातें करनी है। बहुत शिकायतें हैं मुझे तुमसे।
1: वो तो तब तक रहेंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। नहा तो लूं पहले।
2: उम्र भी तो जैसे बहती नदी है, क्या से क्या हो जाता है आदमी। देह की बनावट बदलती है, मन की रंगतें बदलती हैं, फिर भी जीवन किसी राग की आकांक्षा करता रहता है।
6: अलका अलका।
1: हाँ बोलो।
6: देखो तो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए।
1: जरा देखूं तो क्या लाए हैं आप।
6: खोल कर देख लो।
1: अरे सोने की चूड़ियाँ।
6: हाँ सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए।
1: क्यों बेकार में खर्च किया? कौशल और उसकी बहू से कैसे छिपाऊंगी मैं?
6: उन्हें कभी ख्याल हुआ है तुम्हें? सारे जेवर उन्हें चढ़ा दिए और खुद नंगे हाथ रहती हो।
1: कहाँ रहती हूँ नंगे हाथ, कांच की चूड़ियां तो है ना हाथ में।
6: हाँ है। सुनो अभी मैं कमा रहा हूँ। अरे एरियर मिला था तो बनवा ली। कौशल की आमदनी भी कम नहीं है, तिस पर बहू भी सर्विस में है, लेकिन नियत नहीं है।
1: बड़े शहर के बड़े खर्चे होते हैं।
6: यूं कहो कि खुद की जरूरतें इतनी हैं।

0: कि दूसरा कोई नजर नहीं आता। जरूरतें तो अरबपतियों की भी खत्म नहीं होती।
1: छोड़ो कौशल की बात, तुम्हारे नक्षत्र उससे कभी मिले ही नहीं।
0: यूं तुमसे भी कब मिले? तुमने मुझे समझने की कोशिश कभी की ही नहीं। और हां, चूड़िया नहीं चाहती हो तो लाओ, लौटा दूं।
1: बस चिढ़ गए ना, गुस्सा तो नाक पर रखा रहता है। मेरी की इच्छा नहीं होती कि जेवर पहनूं, तुम लाओ और मुझे खुशी ना हो, लेकिन मन मारती हूं, इच्छाओं पर काबू रखती हूं तो गृहस्थी के लिए। बड़े बड़े बेटे हैं, उनकी बहू है, उन सबके बीच
0: यही होता है। उम्र बढ़ती जाती है, छोटी छोटी घटनाएं यादों की स्थायी परतें बनकर कभी मन को कड़वा करती हैं तो कभी खुशी की तरंगे उठाती हैं। तृप्ति अतृप्ति का कोष होता है अंतर्मन।
1: अरे कहाँ खो गए? खाना परोस लाई हूं, अचार लाऊं क्या?
0: अरे आ गई तुम, कब नहा कर निकली, कब तैयार हुई, पता ही नहीं चला।
1: आंखें बंद किए बैठे थे कुर्सी पे, मैंने समझा कि झपकी आ गई है।
0: सोया नहीं था, पुरानी यादों में खो गया था। अलका बैठो।
1: हाँ बैठते हैं। अच्छा शुरू तो करो खाना। हाँ आप कहो, कौन सी यादें आई?
0: अलका तुम याद है, जिंदगी में एक बार मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़िया बनवा कर लाया था। उस वक्त भी तुमसे झगड़ा हुआ था। उस वक्त तुमने कहा था,
1: वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती भेंट थी। मैं अब भी जब उन्हें देखती हूं या पहनती हूं ना, तो देह में सरहन सी दौड़ जाती है। तुम कह रहे थे कि आज दिल खोल कर बातें करोगे। तुम्हारे पास तो बहुत सी शिकायतें होंगी मेरे खिलाफ, है ना?
0: है, बहुत सारी शिकायतें हैं। वास्तव में मैं 7-8 महीनों से बहुत घुटन महसूस कर रहा हूं। सच कहूं किसी तरह भी जी नहीं लगता।
1: अच्छा ऐसा करो, खाते जाओ और बताते भी जाओ। हाँ कहो, क्यों जी नहीं लगता?
0: बस इच्छा होती है कहीं दूर, कहीं और जाकर रहूं, सिर्फ तुम्हारे साथ।
1: मेरे साथ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
0: क्यों नहीं हो सकता, तुम बताओ अलका, क्यों नहीं हो सकता? मेरी पेंशन आती है, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आता है, आराम से रह सकते हैं।
1: लेकिन लोग क्या कहेंगे?
0: हमारे मुंह कभी कभी असलियत को नहीं देख पाते। मुझे बताओ, क्या अंजलि और सुधीर हमसे आजाद होकर अपनी अपनी अपनी स्वतंत्र जिंदगी नहीं जीना चाहते?
1: अच्छा छोड़ो छोड़ो इस सब जिक्र को। हाँ तुम अगर उगता ही गए हो तो ऐसा करो, अकेले कहीं घूमो, 15-20 दिन के लिए कहीं

0: ले जाओगे ना तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। मेरी मर्जी कहीं जाने की नहीं होती। सुधीर के कोई बच्चा जैसा हो जाए तब चलूंगी मैं तुम्हारे साथ हरिद्वार गंगा नहाने के लिए।
1: मैं जानता था तुम अपनी जिद से कभी हटी थी जो अब मेरा ख्याल करोगी। तुम नहीं मानोगी, मैं जानता था। अब भी घुटन और कैद में रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम।
0: सुधीर, सुन रहे हो सुधीर?
2: बाहर का कोई काम नहीं बताना, इस फाइल की रिपोर्ट आज ही तैयार करके देनी है।
0: अरे पहले ये चिट्ठी देखो, पिताजी की बैठक में सफाई कर रही थी तो उनके दीवान पर मिली, ये देखो।
2: होगी, बाद में देख लूंगा, रख दो यहां।
0: अजीब हो, अरे मेरी घबराहट के मारे जान निकल रही है, तुम्हें काम की पड़ी है? पिताजी घर छोड़कर चले गए पता है?
2: आ जाएंगे, माँ से लड़ लिए होंगे, डिस्टर्ब मत करो प्लीज।
0: ओह हाथ रखो, पहले से पढ़ो, लो।
2: तुम भी लो।
0: ये देखो,
2: पढ़ रहा हूँ। ये क्या तरीका है जाने का?
0: और मैं तो क्या,
2: ये और लिखा है अपनी माँ को सुना देना। माँ को बताया तो नहीं?
0: नहीं, मिलते ही तुम्हारे पास लाई हूँ। माँ जी सोचती होगी कि रोज की तरह घूमने गए हैं। सुनो, आज की छुट्टी ले लो, गजब कर गए पिताजी तो।
2: नहीं नहीं, मैं छुट्टी ले नहीं सकता।
0: क्यों?
2: जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम स्कूल मत जाना, मैं दफ्तर से लौट कर बताऊंगा चिट्ठी के बारे में।
0: पर तुम्हारे आने तक मैं कैसे संभालूंगी माँ जी को?
2: जैसे तैसे टालना, आकर मैं सब ठीक कर लूंगा। एक में एक आफत खड़ी कर देते हैं।
0: और नहीं तो क्या।
3: कोमल चेत कृपाल रघुराई, कपि कहे तू धरी ठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। वचन आवनयन भरे बारी, ए नाथ।
0: माजी माजी माजी, चिट्ठी आई है।
4: अरे वही मेज पर रखी है।
0: ओफो, मैं क्या कह रही हूँ और माजी क्या जवाब दे रही है, खाते तो लिए बैठी हूँ। माजी आपको एक खुशखबरी सुनाऊं।
4: तुम इतनी बड़ी खुशखबरी सुना चुकी हो कि मेरे दिल की सारी साध पूरी हो गई। मुझे तो विश्वास था कि तुम जरूर।
0: अरे मैं दूसरी खुशखबरी सुना रही हूँ माजी, आपके बेटे भी सुनकर खुश हो जाएंगे। सुनो सुनो माँ, पिताजी का खत है, वो ऋषिकेश में है, सुनो।
4: नहीं तुम पढ़ लो, हर सुधीर को सुना दे रहा।
0: अरे वो जल्दी आ रहे हैं माँ।
4: क्यों आ रहे हैं दोबारा कैद खाने में?
0: माँ
4: घर तो उन्हें जेल लगती थी ना, यहाँ तो उनका दम घुट रहा था ना, आजादी से रहते क्यों नहीं वहां पर?
0: कैसी बातें कर रही हो माँ जी, अरे 11 महीने बाद पहला खत आया है और वो भी आने का। आप खुश नहीं हुई?
4: नहीं बिल्कुल नहीं। जो बिना बताए कायर और चोर की तरह भाग जाए, पत्थर सा छाती पर मार कर चला जाए, उसके आने की कैसी खुशी।
0: माँ जी अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना माँ जी, चलिए चाय पीजिए। अरे आ रहे हैं तो ये जानकर महसूस करने के बाद ना कि हमारे बगैर उन्हें शांति नहीं मिल सकती।
4: तब क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है मुझे? खिलौना चाबी भरी की पहले सी हो गई। अरे तो
5: तुम्हारे होने वाले बच्चे की खुशी क्यों?

0: को भी शख्स ने पत्थर में दाब दिया, पत्थर में।
1: कोशिश करिएगा माँ जी कि घर में पहला सा अपनेपन का वातावरण हो जाए। पिताजी वास्तव में हमें भी चाहते हैं और आपको भी, और वो भी सुनकर खुश होंगे। इस खुशी को सुनकर उन्हें तो उम्मीद ही कम थी। माँ जी परिवार को ग्रहण लग गया था, समझिएगा कि हट गया।
2: उनका जाना सह लिया तो आना भी सहना ही होगा, पर कैसे ये मैं कैसे बता सकती हूँ, कैसे बता सकती हूँ कि चटके हुए शीशे में अपना पहला सा अक्स देख भी पाऊंगी या नहीं।

आप सुन रहे थे नाटक ग्रहण, लेखक थे श्री राजानंद भटनागर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में। फिल्म का नाम है करीब। गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शफकत अमानत अली शंकर महादेवन और केरलेसा की आवाजों में।

शफकत अमानत अली शंकर महादेवन और कारा लैसा की आवाज़ों में आपने सुना कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मीत प्रदर्श की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है की एंड का। गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है मीत प्रदर्श का।

0: ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम था लापता लेडीज। गीत को लिखा था प्रशांत पांडे ने, संगीत था राम संपत का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफ एम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के एक बजने को हैं कुछ ही देर में। आकाशवाणी जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की कवायद में ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना की व्यापक रूपरेखा का उद्देश्य अगले 5 सालों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये स्वीडन का किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हुए समारोह में उनके साथ मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्टी ने 14 मई को श्री सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। राज्य विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष में आज विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोगों की लॉन्चिंग की। साथ ही विधानसभा के चारों द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस नवाचार की पहल की। गौरतलब है कि डिजिटल पेपरलेस व्यवस्था, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक दीर्घाओं, डिजिटल संग्रहालय सहित अन्य नवाचारों से राजस्थान विधानसभा को देश में अनूठी पहचान मिली है। हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथून कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
2: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून

0: के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
1: प्रदेश में दिन के साथ अब रातें भी काफी तपने लगी है। कल 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कुछ अन्य शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। उधर चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रात का पारा 33.2 डिग्री पहुंचने से गर्म रातों का दौर शुरू हो गया। कोटा में भी रात का पारा 32 डिग्री सेल्सियस उछल गया। राजधानी जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रैंकिंग में सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे और चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें स्थान पर है। वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। दिल्ली में खेले गए मैच में कल 194 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है साक्षी गोस्वामी और माधुरी शर्मा।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आपकी अपनी सखी माधुरी शर्मा और मेरे साथ है
1: साक्षी गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार हमारा स्नेह भरा नमस्कार। तो बहनों हो गई हैं अब गर्मी की छुट्टियाँ
0: हाँ।
1: और आपने भी ली होगी लंबी गहरी सांस।
0: हाँ बिल्कुल
1: क्योंकि अब समय हो गया है मायके जाने का है ना।
0: बिल्कुल
1: पूरा साल हम इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते
0: करती हैं
1: कि कब ये छुट्टियां आए और हम जिम्मेदारियों का मुखौटा उतार कर कुछ दिन अपने आप को अपने बचपन को फिर से जी लें अपने मायके के रूप में।
0: बिल्कुल मायके जाने की बात आते ही हर औरत का चेहरा खिल जाता है ना?
1: बिल्कुल
0: सही कहा तुमने साक्षी। हम महिलाएं न जाने कितने मुखौटे पहन कर रहती हैं। अच्छी बहू का, जिम्मेदार पत्नी का, सबको मान देने वाली भाभी का और ममतामयी माँ का, ये सभी किरदार शिद्दत से निभाते निभाते हम कहीं खो देते हैं स्वयं को और अपने अस्तित्व को भी। तो एक बेटी तो इस मुखौटे के नीचे दबकर कहीं छुप ही जाती है ना?
1: बिल्कुल।

0: भी दब जाती है इन मुखौटों के नीचे, तभी तो ये गर्मी की छुट्टियां आती है माधुरी, जब हम स्वयं से मिलते हैं, मायके की गलियों में खुद को उछलते कूदते देखते हैं, घर के हर कमरे में खुद को महसूस करते हैं, अपने बचपन के किस्से बच्चों को सुनाते हैं और खो जाते हैं उन मीठी यादों में। ये गर्मी की छुट्टियां हम महिलाओं के लिए ना रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती हैं, है ना।
1: अच्छा।
0: पूरे साल भर की एनर्जी हमको इन छुट्टियों में मिल जाती है।
1: बिल्कुल, पूरे साल की एनर्जी हमें मिलती है और हम तरोताजा हो जाते हैं। जब सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तब सहेलियों से वो घंटों की मुलाकात होती है, वो चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी का प्यार मिलता है और मिलती है अनगिनत यादें जो साल भर के लिए बस
0: हमारे मन में
1: और हमारे बच्चों के मन में भी, है ना साक्षी?
0: बिल्कुल माधुरी। हाँ। और मायका केवल ना कहते हैं एक घर नहीं होता है सिर्फ, हर बेटी के मन का सबसे सुकून भरा कोना होता है, जहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं होती, जहाँ कोई भी जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा नहीं होता, हम स्वच्छंद घूमते हैं, है ना, जहाँ डांट में भी अपनापन होता है और खामोशी में भी प्यार छुपा होता है। समय चाहे कितना ही बदल जाए, हम चाहे कितने भी बड़े या फिर कहें कि बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन मायके की यादें ना कभी पुरानी नहीं होती।
1: मायका हमें वही लगता है, वैसा ही लगता है। और क्या, जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, या जीवन पहले हमें मतलब जीवन में कभी भाग दौड़ में हम खुद को खोने लगते हैं, तब सबसे पहले हमें मायका ही याद आता है, जहाँ बिना किसी चिंता के हंसना हमने सीखा था। और कहते हैं ना, माँ कहते भी है ना कि माँ का घर वो जगह होती है जहाँ जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, और माँ हमारे चेहरे को पढ़ लेती है।
0: बिल्कुल, हम बिना किसी वजह के भी कभी भी अपने माँ के घर जा सकते हैं, है ना।
1: हाँ।
0: लेकिन वही है कि जिम्मेदारियाँ हमें रोके रखती हैं, मगर ये गर्मी की छुट्टियां हमको स्वच्छंद बना देती हैं, है ना। क्योंकि बहनों, मायका वो एहसास है जहां हम बेटियां उम्र से नहीं प्यार से पहचानी जाती हैं, जहां हमारा चेहरा देखकर ही हमारे घर वाले समझ जाते हैं कि हम खुश हैं या नहीं, चाहे हम कितने ही मुखौटे क्यों ना पहने हों, भले ही हम ससुराल में कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना निभा लें बहनों।
1: हाँ।
0: लेकिन मायके में हम फिर वही नटखट बच्ची बन जाते हैं।
1: बिल्कुल, और मायके में जीने के लिए हमारा मन करता है हम कुछ दिन और रुक
0: जाए
1: ना। तो बहनों, इन छुट्टियों आप भी जिम्मेदारियों के सारे मुखौटे उतार कर अपने मायके जाइए, जहाँ आपका बचपन आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये प्यार और अपनापन आपका और आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ आपका इंतजार होगा आपके घर वालों के द्वारा।
0: बिल्कुल, आपके जो माता पिता हैं वो एक नाना नानी के रूप में भी अपने नाती पोतों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और कितनी ही ना जाने उनकी पसंद की चीजें, आपके पसंद की चीजें आपके माता पिता बनाते हैं और लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे हमारे
1: वो इंतजार करते हैं इन छुट्टियों का कि कब आए बच्चे, कब बेटी,
0: ताकि उनका घर भी खिलखिला
1: घर खिलखिला,
0: क्योंकि मायके की चौखट पर मिलता सुकून निराला है, माँ की ममता में छुपा हर दर्द का उजाला है, दुनिया चाहे कितनी भी आगे क्यों ना निकल आए, लेकिन एक बेटी के लिए मायका हमेशा सबसे प्यारा है। तो बहनों, आप भी मायके जाइए और लुत्फ उठाइए और अपनी जिंदगी को फिर से मुस्कुराइए और यही गीत गुनगुनाइए
1: जी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: माधुरी, हम अभी खूबसूरत यादों की बात कर रहे थे, है ना? तो जीवन बहुत ही सुंदर है, उसे चलाने के लिए हमारा आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है ना?
5: हाँ, बिल्कुल साक्षी, विश्वास और सौहार्द भावनाएं, जीवन इसी से हमारा जो जीवन है वो चलता है। लेकिन साक्षी, आत्मविश्वास के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते।
4: ये बात तो सही कह रही हूँ,
5: है ना? और जीवन नैया चलाने में खुद पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, और आत्मविश्वास का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारा आत्मविश्वासी होना। यदि कभी हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो लगता है कि जीवन मुश्किल है, और कैसे हम सफलताओं को प्राप्त करेंगे, है ना? आज के जो समय है वो बहुत ही प्रतियोगिता भरा है ना,
4: हर चीज में प्रतियोगिता है। हाँ, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं, बच्चों से हम देखते हैं, तो आजकल छोटी छोटी क्लास में भी प्रतियोगिता है।
5: बिल्कुल है।
4: और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका लेवल बढ़ता जाता है, है ना?
5: ऐसे
4: ऑफिस में बिल्कुल, और ऑफिस में भी एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन है। और अगर हम बाहर की बात क्यों करें माधुरी, अगर हम देखते हैं
5: कि
4: घर में भी हमारा एक दूसरे के

0: प्रति कंपटीशन है,
1: हाँ हाँ.
0: है ना. तो ऐसे में क्या होता है ना कि कई बार हम इन सब के चक्कर में हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास होता है, हाँ ना, हाँ. वो डगमगाने लग जाता है. हम खुद को कमतर महसूस करने लग जाते हैं
1: और अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं. तो हमें लगता है कि क्या करें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए, है ना. किस तरह से अपनी कमियों को पूरा करें. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है खुले दिल से अपनी कमजोरी को स्वीकार करें.
0: बिल्कुल, क्योंकि कमजोरियों को, हाँ, क्योंकि कमजोरियों को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है बहनों. आप अपनी कमियों को जब स्वीकार करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे ना कि आप में क्या चीज कम है.
1: हाँ.
0: तो आप उस पर उसको निखारने में आप अपना समय लगाइए.
1: हाँ. खुद से सकारात्मक बातें करें और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें. आपकी क्षमता को इससे बढ़ावा मिलेगा और उससे आप में भरोसा
0: आएगा. बिल्कुल माधुरी. हाँ. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो तुमने छोटे छोटे स्टेप बताए है ना, और उसके अलावा मैं बताती हूँ कि आत्म अनुशासन भी बहुत जरूरी है
1: ना.
0: और साथ में सकारात्मक सोच. अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं ये मुझसे काम नहीं होगा तो आप सच में नहीं कर पाएंगे. और वही, क्योंकि आपका दिमाग भी वही चीज स्वीकार करने लग जाएगा.
1: क्योंकि आप दिमाग को सीधा सीधा सिग्नल दे रहे हो कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा.
0: इसीलिए कहते हैं ना आजकल मैनिफेस्टेशन, है ना. मैनिफेस्टेशन. आप अपने आप को कहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ. तो आपके अंदर अपने आप ही तुरंत नहीं तो थोड़े से समय बाद आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. और छोटे छोटे लक्ष्यों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे से कदमों से ही एक बड़ा परिवर्तन आता है. और बहुत जरूरी है छोटे छोटे से प्रभावी कदम उठाना.
1: हाँ. और दूसरी बात, प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए. भावना योग भी इसमें प्रमुख योगदान दे सकता है. हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या गायत्री मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं. और बहनों, खुद की तुलना दूसरों से बिल्कुल ना करें.
0: ये बहुत जरूरी,
1: है ना. क्योंकि आप एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग आत्मा है, एक अलग खूबियों के साथ आपका जन्म हुआ है. आपके अन्य लक्ष्य हो सकते हैं. ईश्वर ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए जन्म दिया है. तो अपनी खूबियों को पहचाने और इसके साथ ही साक्षी हमें उपलब्ध साधनों से ही समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, न कि काल्पनिक साधनों के माध्यम से जो संभव नहीं हो सकता, है ना.
0: बिल्कुल. हाँ. और हर दिन एक नया, आप समझिए, हर दिन आपके लिए एक नए चैलेंजेस लेकर आता है और एक कई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है.
1: बिल्कुल.
0: तो हर दिन को आप नया समझिए. सुबह ईश्वर के दर्शन के साथ ही अपना दिन प्रारंभ कीजिए. उससे भी बहुत पॉजिटिविटी आती है. दिन का एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए. स्नान, ध्यान वगैरह अगर आप करते हैं तो पूजा के बाद जो आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है.
1: बिल्कुल,
0: है ना. और सुंदर और आरामदायक तरीके से और खिलते हुए जो रंग होते हैं ना, वो भी पहनिए. अब आप कहेंगे कि
1: वस्त्र कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता
0: है. तो अगर आप खिलते हुए रंग पहनेंगे, डम कलर नहीं पहनेंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी. और पॉजिटिविटी आएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, है ना.
1: यदि किसी कार्यालय में आप काम करती है तो ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कपड़े पहनिए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, है ना. और दूसरा, खाना जो भी है ना, वो भी हमें ऐसा लेना चाहिए जो सुपाच्य हो, संतुलित हो. ऐसा भोजन ले, और भोजन ऐसे ले जो स्फूर्ति प्रदान करने वाले, जैसे बादाम, ब्रोकली, चिया सीड्स, जूस ले सकती हैं फलों का. तो इससे आप में एक स्फूर्ति आती है.
0: और हम अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी आप बहनों ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है.
1: हाँ.
0: अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा.
1: बिल्कुल.
0: और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा.
1: भी कहने का मतलब है बॉडी लैंग्वेज जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए.
0: बिल्कुल,
1: है ना. और
0: अपनी व्यवहारिक आदतों को आप, अगर आपकी कोई कमियां हैं तो उसको सुधारिए और उनको अच्छी आदतों को अपनाइए, है ना.
1: बिल्कुल. तभी तो कुछ पंक्तियां मैं लेकर आई हूँ. दिन में सूरज है अगर तो रात भी कभी चांद, रात को भी चांद तारे हैं. पर जीत तो वो लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं, है ना. अपनी असफलता को कभी कमजोरी ना समझे, बल्कि अपना उससे हौसला बनाए. क्योंकि हर सफलता असफलता की सीढ़ियों से गुजरती है.
0: क्योंकि और, कहते भी हैं कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है.
1: बिल्कुल. असफलता हमें सिखाने के लिए हमारे जीवन में आती है. और उसे अपनी ताकत बनाए. जुनून के द्वारा आप जीत जाएंगे. बिल्कुल. हाँ, इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां और लेकर आई हूँ,
0: तो सुनाओ जल्दी से.
1: हाँ. शून्य मुझ में है बहुत से जानता हूँ. शून्य मुझ में है बहुत से जानता हूँ. एक ही अंक बस मिलता नहीं है. संचयन जल का नहीं कम कहीं से. संचयन जल का नहीं है कम कहीं से. किंतु उसमें जलज क्यों खिलता नहीं है.
0: यत्न करके मैं बहुत धरा हुआ हूँ. यत्न करके मैं बहुत धरा हुआ हूँ. कौन हूँ मैं, क्यों नहीं आभास मुझको. कम नहीं हूँ मैं किसी से इस जगत में. क्यों नहीं इस बात का विश्वास मुझको.

0: को। देखकर उस दिन बहुत विस्मित हुआ मैं, एक तृण तूफान में जब खेलता था, एक दीपक भी अचंभित कर गया था, प्रबल झंझावात को वह झेलता था।
1: निज शशंकित बुद्धि ने मुझको गिराया, स्वयं को आगे बढ़ने नहीं दिया है। पंखता पर हौसले की इस कमी ने विहग को नब तक नहीं चढ़ने दिया है।
0: मरकटक 100 बार गिरकर भीत पर से छोड़कर उत्साह निज भागे नहीं वह, अंततः अपने प्रयत्नों में सफल हो किस लिए

बिल्कुल मन से करिए, सही तरीके से करिए, तो देखिएगा बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी और आप बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। अब एक संकल्प हम भी आपके लिए लेकर आए हैं कि हमें एक गीत सुनाना है, तो सुनाते हैं ये हौसले भरा गीत।

0: ആകാശവാണി @90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: माधुरी, कल मैं ना डॉक्टर के यहाँ गई थी।
4: अच्छा।
3: और वही मंथली चेकअप के लिए जो जाते ही हैं, तो उसमें जब मेरी हर एक तो रिपोर्ट सही आई, मगर विटामिन डी की ना बहुत ज्यादा कमी आई।
4: अरे।
3: और हम में से अधिकतर महिलाओं में यही है कि विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी आती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाता है।
4: और विटामिन डी और कैल्शियम भी कम आता है,
3: बिल्कुल।
4: और उसकी वजह से कभी हमारे पाँव में दर्द रहता है, कभी हमारी कमर में दर्द होता है, और हर बार हम अपने आप को थका थका महसूस करते हैं,
3: बिल्कुल। और अंदर से कुछ अच्छा भी नहीं लगता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी मतलब ये जो खास तौर की कमी है वो हमारे शरीर पर हमें दिखाई देने लग जाती है, यानी हम थकान महसूस होती है। विटामिन डी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। विटामिन डी एक प्रमुख जो काम होता है उसका कार्य है आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए नियमित थूप लेना और विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। लेकिन अत्यधिक धूप से स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है, जैसा कि इन दिनों गर्मी है,
3: बहुत ज्यादा गर्मी है। वही तो मुझे समझ में नहीं आता ना, अब तुमने कहा कि ये ना धूप हमको लेनी चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी है कि विटामिन डी हम धूप से ले कैसे? क्या भरी धूप में हम छत पर घूमने चले जाएं? मतलब कपड़े सुखाने में भी हम इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। लेकिन क्या तरीका है कि हम सूरज से विटामिन डी को ले सकते
4: हैं? बिल्कुल ले सकते हैं विटामिन डी को। हाँ साक्षी, आप गर्मियों में सुबह 7 से 8 बजे तक की धूप ले सकते हैं, या फिर 6 से 7 6 बजे धूप शुरू हो जाती है हमारे यहाँ, तो 6, 7 और 8 के बीच की जो धूप है वो ले सकती हैं, और सर्दियों में 7 से 9 बजे के बीच की जो धूप है वो ले सकती हैं। इस धूप के सेवन के लिए आप पार्क में या छत पर भी जाकर इसका सेवन कर सकती हैं सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। गर्मियों में आप साधारण पार्क में ही जा सकती हैं, जहाँ धूप छाया मिश्रित हो, वहाँ इसको प्राकृतिक तरीके से आप विटामिन डी जो है वो ले सकती
3: हैं। वही है कि जाती हुई धूप का हम सेवन करें तो ज्यादा सही रहता है शाम के टाइम, है ना?
4: शाम के नहीं, सुबह की धूप ज्यादा अच्छी बताई जाती है, वो भी जैसे उदित हुई है, जैसे 7 से 8 के या 6 से 7 8 के बीच के समय। वैसे तो साक्षी विटामिन डी जो धूप से ही हमें प्राकृतिक रूप से लिया जा सकता है, लेकिन भोजन के द्वारा भी हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं। इसमें है फैटी फिशर, यानी मछली से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सैल्मन, मैकेरल मछली और टुन्ना मछली, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें जो है विटामिन डी पाया जाता है।
3: और इसके साथ ही अगर आप अंडा खाती हैं तो अंडे की जर्दी में या उसके बीच के हिस्से में भी विटामिन डी काफी मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप शाकाहारी हैं तो आप इसको फलों के द्वारा भी प्राप्त कर सकती हैं, मगर उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत कम,
4: ना के बराबर होती है साक्षी, या फिर ना के बराबर या बहुत कम होती है, जो विटामिन डी के अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए पोषण के रूप में आप फोर्टिफाइड संतरे का जूस ले सकती हैं, या फिर एवोकाडो एक फल होता है, उसको भी आप प्रयोग कर सकती हैं। केला आप नियमित रूप से खा सकती हैं, इसे अपने भोजन में शामिल कर सकती हैं।
3: और सूर्य
4: तो है ही विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत और प्राकृतिक स्रोत,
3: तो धूप में कुछ समय बिताइए।
4: हाँ बिल्कुल,
3: बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप में मत जाइए, लेकिन हाँ अगर हल्की धूप है तो आप अपना समय बिता सकती हैं, रोजमर्रा के थोड़े बहुत काम कर सकती हैं धूप में,
4: बिल्कुल,
3: जिससे आपको विटामिन डी

0: सर्दियों में तो धूप में काम कर सकती है, लेकिन गर्मियों में आप घूमने का समय जो है थोड़ा सा धूप आ जाए तब उस समय रख सकती हैं। शक्षी भी प्रश्न उठता है कि कैसे सुरक्षित तरीके से विटामिन डी को हम अपनी जो त्वचा में है वो इंजेक्ट करें, कैसे लें, त्वचा को अत्यधिक खुला रखें, हमारा कहने का मतलब है जिससे त्वचा सीधे सूर्य के संपर्क में आ सके। विटामिन डी जो है त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसका मतलब है 45 मिनट की कम से कम धूप में हमें बैठना चाहिए और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे सूर्यमुखी के बीज आप ले सकती हैं खाने में, मोरिंगा जिसे सहजन जो है उसकी पत्तियां ले सकती है, उसके फूलों का प्रयोग भी आप सब्जी के रूप में कर सकती है,
1: और आप सनबाथ ले सकते हैं। मगर सनबाथ में लेने में अब आप सोचेंगे कि हम इतना समय हम कैसे बिताएं, तो आप कोई भी काम ना अगर आपको इजी बनाना है ना बहनों, तो आप गीत गुनगुनाइए, गीत को सुनिए, है ना, तो कोई भी काम इजी बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस काम में ज्यादा समय लगेगा तो बस एक खूबसूरत गीत सुनिए और अपना काम इजी कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: माधुरी, कभी कभी हम जीवन में छोटी छोटी बातों को टाल देते हैं, है ना, जैसे कि नियमित स्वास्थ्य जांच, सुरक्षित आदतें अपनाना या किसी बीमारी के बारे में सही जानकारी लेना। लेकिन यही छोटी सावधानियां ना आगे चलकर बड़े संकटों से हमें बचा भी सकती हैं।
1: बिल्कुल बचा सकती है।
0: जिस तरह घर की मजबूत नींव पूरे मकान को सुरक्षित रखती है, उसी तरह जागरूकता हमारे स्वास्थ्य की सबसे मजबूत ढाल होती है।
1: बिल्कुल होती है, सही कहा तुमने साक्षी। आज के समय में कई बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज संभव है, लेकिन उनसे बचाव और सही जानकारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्हीं में से एक है HIV/AIDS। आज यानी 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जो कि हमें ये याद दिलाता है कि विज्ञान, जागरूकता और मानवता मिलकर किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत रखते हैं।
0: और अब बात आती है बहनों कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है क्या। बहनों, हर वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को HIV और एड्स के प्रति जागरूक करना, वैक्सीन अनुसंधान को समर्थन देना और उन सभी वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को और स्वयं सेवकों का सम्मान करना जो इस बीमारी के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
1: ये दिवस हमें सिखाता है कि बीमारी से लड़ाई केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही जानकारी, संवेदनशील व्यवहार और सामाजिक सहयोग से जीती जाती है। अब जानते हैं कि HIV और एड्स क्या है। HIV एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यदि समय पर उपचार न मिले तो स्थिति आगे चलकर एड्स का रूप ले सकती है।
0: लेकिन बहनों, आज चिकित्सा क्षेत्र ने काफी प्रगति कर ली है। सही समय पर यदि आप जांच और उपचार कर लें तो HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। अब आपके मन में ये जरूर शंका होगी कि HIV फैलता कैसे है, तो आपको बता दें कि अगर असुरक्षित शारीरिक संबंध होता है तो HIV फैल सकता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई या इंजेक्शन के उपयोग से और गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में HIV फैल सकता है।
1: तो बिल्कुल जागरूक रहिए कि ये किस तरह से फैलता है, बिल्कुल इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये रोग कैसे नहीं फैलता है। ये जानना उतना ही जरूरी है कि HIV साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, खाना साझा करने से या गले लगने से या फिर कपड़े उसके इस्तेमाल करने से नहीं फैलता। इसलिए HIV संक्रमित लोगों से भेदभाव करना बिल्कुल गलत है और अमानवीय भी।
0: बिल्कुल सही कह रही हो माधुरी, क्योंकि बहनों अज्ञानता अक्सर हमारे अंदर डर पैदा करती है और डर भेदभाव को जन्म देता है। जब समाज सही जानकारी अपनाता है तभी संवेदनशीलता और सहयोग बढ़ता है। जागरूकता हमें सिखाती है कि सुरक्षित जीवन शैली कैसे अपनाएं और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए, अफवाहों से बचें। और इसमें इन सब चीजों के लिए मैं कहती हूँ कि युवाओं की भूमिका बहुत खास होती है, क्योंकि युवा समाज की ऊर्जा और भविष्य दोनों होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, वो जो सही कहा साक्षी तुमने, यदि युवा वर्ग सही जानकारी फैलाएगा, सुरक्षित आदतें अपनाएगा, दूसरों को जागरूक करेगा तो HIV जैसी बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। और सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाना आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
0: बहनों, सोशल मीडिया हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, जागरूकता फैला भी सकते हैं, तो उसका आप ना मतलब उसका फायदा उठाइए आप, है ना।
1: और आपको ध्यान रहना चाहिए, सब कुछ देखते रहिए।
0: बिल्कुल, मैंने विश्व एड्स वैक्सीन दिवस केवल एक तारीख नहीं है बल्कि उम्मीद, जागरूकता और मानवता का संदेश है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बीमारी से नहीं बल्कि गलत सोच और लापरवाही से डरना चाहिए। तो बहनों आइए हम सब संकल्प लें इस दिन कि हम सही जानकारी अपनाएंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और HIV संक्रमित लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग का व्यवहार करेंगे, क्योंकि जागरूक समाज ही स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाता है।
1: हाँ, अब हमारा कार्यक्रम स्वस्थ बने खूबसूरत गीतों से, आइए हम इसको और भी स्वस्थ बनाते हैं।

0: बहनों, कभी आपने अपने पुराने संदूक को खोलते हुए दादी नानी की कोई पुरानी तस्वीर, चिट्ठी या सिक्का देखा है? उसे हाथ में लेते ही ऐसा लगता है ना, जैसे बीता हुआ समय फिर से आंखों के सामने आ गया, है ना?
1: हाँ शक्षित, पुरानी चीजों से अलग सा हमारा लगाव होता है। ये बीते समय की कहानी कहते हुए लगते हैं और हमें यादों में ले जाते हैं, है ना?
0: बस बिल्कुल ऐसा ही संग्रहालय हमारी हर घर में होता है, एक बक्से में छुपा हुआ, है ना? संग्रहालय कुछ ऐसा ही होता है बहनों, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की यादें संभाल कर रखी जाती हैं। पुरानी तलवारें, मिट्टी के बर्तन, राजाओं के वस्त्र, प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, चित्रकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सब केवल चीजें नहीं होती हैं बल्कि हमारे इतिहास की बोलती हुई कहानियां होती हैं।
1: हाँ, और एक बात बताऊं साक्षी, ये तो ये, इसके अलावा बहुत सारे अखबारों की कटिंग भी वहाँ होती है,
0: बिल्कुल,
1: जो हमें पुराने समय पे ले जाती है और इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसी कला बनाते थे और उनका जीवन कैसा था। इसी महत्व को समझाने के लिए हर

0: 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि विश्व संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति और इतिहास को समझ सके। और आपको भी अपने बच्चों को ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहिए छुट्टियों में, तो खास तौर से जब आप कहीं गए हो तो उस स्थान के संग्रहालय में आप जरूर बच्चों को जरूर ले जाएं।
1: बिल्कुल। और आज के समय में जब बहनों लोग मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं तब संग्रहालय हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। वहां जाकर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास किताबों से निकल कर हमारे सामने खड़ा हो गया है ना। प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह पुरानी वस्तुओं को संभालना नहीं होता बल्कि अपनी पहचान और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। और बहनों यदि ये वस्तुएं ना बचाई गईं तो आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से तो अनजान ही रह जाएंगी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा शाकिर तुमने। हमें समय समय पर संग्रहालयों का भ्रमण करना चाहिए और बच्चों को भी इनके महत्व के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास और कला को सहेज कर रखता है वही भविष्य में अपनी संस्कृति को जीवित रख पाता है और हम भी ऐसी संस्कृति में जुड़े रहते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का घर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और गौरव का अनमोल खजाना है।
1: बिल्कुल बहनों, इसलिए संग्रहालय जरूर जाइए। और हमारे कार्यक्रम का अनमोल खजाना है खूबसूरत गीत, तो आइए ले चलते हैं आपको खूबसूरत गीतों के संग्रहालय में।

0: इतनी गर्मी में भी हमको ठंडक का एहसास होता है और बार बार आपसे मिलने का मन करता है, इसीलिए तो हम खिंचे चले आते हैं।
1: तो अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त होने वाला है, तो आज्ञा दीजिए अपनी बहन माधुरी शर्मा
0: और साक्षी गोस्वामी को नमस्कार।

0: and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय

0: द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं हो।

0: होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग

0: पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर, महुआ कामत और सिद्धार्थ श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल चाहता है। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

एम जी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आपने डोली सजा के रखना फिल्म का गीत अभी सुना। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीत था ए आर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बर्फी।

दिल्ली 6 फिल्म का गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में। फिल्म का नाम है लुटेरा। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

मोनाली ठाकुर की आवाज में गाए लुटेरा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलो हर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5 बजने को है। आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। आज के इस युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं कुमकुम स्वामी और निशा शर्मा।

0: युवाओं की सोच को नई उड़ान देते हैं, बातों बातों में हर एहसास से मिलते हैं। स्वागत है आपका युवाणी के इस सफर में, जहां हम दिल से जुड़ते हैं और विचारों से खिलते हैं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में। और आज की आपकी दोस्त मैं हूं कुमकुम स्वामी।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त निशा शर्मा। और हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो शायद आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन पर ठहर कर सोचने का समय हम अक्सर नहीं निकाल पाते हैं।
0: हाँ निशा, आजकल एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अब लोगों की सुबह सूरज की रोशनी से कम और मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी से ज़्यादा होती है। और वैसे मेरा भी यही हाल है।
1: सिर्फ तुम्हारा ही नहीं कुमकुम, सभी का यही हाल है। अगर 5 मिनट मोबाइल हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खबरें हमसे छूट जाएंगी। और मज़ेदार बात यह है कि पहले लोग चाय के साथ अखबार पढ़ते थे, अब अखबार से पहले मोबाइल पढ़ लेते हैं।
0: सच बताना दोस्तों कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उठते ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं, या फिर किसने स्टेटस देखा, किसने रील लाइक की, और सबसे ज़रूरी रात भर में कौन सी नई खबर वायरल हो गई।
1: कुमकुम, मुझे तो लगता है कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह मोबाइल स्क्रीन की रोशनी से शुरू ना होती हो। आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही उंगलियां सोशल मीडिया पर पहुंच जाती हैं।
0: और निशा, सच तो यही है कि सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। इतनी तेजी से बदला है कि शायद हम खुद भी ठीक से समझ नहीं पाए कि हम एक साधारण सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी मशीन का हिस्सा बन चुके हैं जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वास तक को प्रभावित करती है।
1: और अब हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, हर व्यक्ति के पास मंच है, और हर व्यक्ति अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। ये बदलाव अपने आप में यूनिक है। यही कारण है कि सोशल मीडिया ने कई लोगों को आवाज़ दी है, कई छिपे मुद्दों को सामने लाए और समाज में कई सकारात्मक बदलाव भी किए।
0: पर निशा, कहते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये नहीं है कि यहाँ झूठ मौजूद है, झूठ तो हर दौर में था। असली समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर झूठ बहुत आकर्षक बन जाता है
1: और सच अक्सर साधारण होता है, शांत होता है और तथ्यों के सहारे चलता है। लेकिन झूठ में ड्रामा होता है, डर होता है, रहस्य होता है, और सबसे बड़ी बात की वो तेजी से फैलता है।
0: आज कोई साधारण जानकारी लोगों का ध्यान नहीं खींचती, लेकिन दोस्तों अगर उसी जानकारी में सनसनी जोड़ दी जाए तो वो तुरंत वायरल हो जाती है। क्यों दोस्तों, ये तो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा।
1: और यही कारण है कुमकुम कि सोशल मीडिया पर कई बार सूचना की विश्वसनीयता उसकी सच्चाई से नहीं बल्कि उसके वायरल होने से तय होती है। अब लोग किसी खबर का सोर्स कम देखते हैं और उसकी प्रस्तुति ज़्यादा देखते हैं।
0: अगर कोई वीडियो अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक, तेज एडिटिंग और कॉन्फिडेंस भरी आवाज़ के साथ बनाया गया हो तो लोग उसे जल्दी सच मान लेते हैं, चाहे उसके फैक्ट्स गलत हों, अधूरे हों या पूरी तरह ही मिसलीडिंग हो। और निशा, तुम्हें पता है कि कई बार तो पुराने वीडियोस नए घटनाओं के नाम पर फैलाए जाते हैं और लोग बिना जांचे ही उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं।
1: क्या करें कुमकुम, सोशल मीडिया की दुनिया में फॉरवर्ड करना बहुत आसान होता है, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल हो गया है। एक समय था जब लोग अफवाहें मोहल्लों में फैलाते थे, और आज वही अफवाहें कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं।
0: इसलिए निशा, अब सूचना की विश्वसनीयता आज सिर्फ पत्रकारों या फिर मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं रह गई, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है।
1: दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव भावनाओं का होता है। जो बातें लोगों को डराती हैं, चौंकाती हैं या गुस्सा दिलाती हैं, वो सबसे तेज फैलती हैं।
0: और दोस्तों, सोशल मीडिया का एक और रोचक पहलू है।
1: वो क्या है कुमकुम?
0: वो ये कि अब सिर्फ सूचना नहीं दिखाता सोशल मीडिया, बल्कि हमारी पसंद के अनुसार सूचना चुनकर दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी विशेष प्रकार की खबरें देखता है तो एल्गोरिदम उसे उसी तरह की और खबरें दिखाने लगता है।
1: अरे हाँ कुमकुम, ये तो मैंने भी नोटिस किया है।
0: इसलिए निशा, धीरे धीरे व्यक्ति एक ऐसी डिजिटल दुनिया में रहने लगता है जहाँ उसे वही दिखाई देता है जो वो पहले से मानता है। इससे उसकी सोच सीमित होने लगती है और वो दूसरी राय सुनना कम कर देता है, और उसे लगने लगता है कि वो

0: पूरी सच्चाई वही है जो उसने स्क्रीन पर दिखाई जा रही है।
1: अगर दोस्तों आपने भी ये चीज़ नोटिस की है तो ज़रा ध्यान से सोशल मीडिया का यूज़ करें और हर दिखाई चीज़ का असर अपने और अपनी सोच के ऊपर काम होने दें। हमेशा सेकंड पर्सपेक्टिव को सुनने को तैयार रहें,
0: क्योंकि दोस्तों आज सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति किसी न किसी विषय का एक्सपर्ट दिखाई देता है। कोई स्वास्थ्य पर सलाह दे रहा है, कोई पॉलिटिक्स समझा रहा है, तो कोई अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहा है, और कोई छिपा हुआ सच सामने लाने का दावा कर रहा है। प्रॉब्लम राय देने में नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग राय और तथ्य के बीच का अंतर भूलते जा रहे हैं।
1: और दोस्तों यही कारण है कि आज के समय में डिजिटल साक्षरता उतनी ही ज़रूरी हो गई है जितनी सामान्य शिक्षा। सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी जानकारी विश्वसनीय है और कौन सी सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई है।
0: सोशल मीडिया ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी दी है। दोस्तों आज हर व्यक्ति सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि सूचना फैलाने वाला भी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं और साझा करते हैं उसके प्रति अवेयर रहें, क्योंकि इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ सूचना नहीं बल्कि सही सूचना का पहचान है। बाकी स्क्रीन की दुनिया में क्या सच है, क्या सिर्फ दिखावा, ये तो खुदा जाने।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से

0: दोस्तों, हमने अभी बात की सोशल मीडिया पर सूचना की ताकत और उसकी सच्चाई की। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कितने सतर्क नागरिक हैं। क्या आपको देश विदेश में हो रही चीज़ों की के बारे में नॉलेज है, या फिर आप भी सिर्फ सोशल मीडिया पर मिली सूचना तक ही सीमित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्विज सेगमेंट, जिसमें पूछे गए सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कार्यक्रम में अंत तक बने रहना होगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि AI आधारित हेल्प बोट अभय को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था।
1: दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है। दोस्तों, एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को इफेक्ट किया, जिसका नाम सुनते ही कभी लोगों के मन में डर, भ्रम और निराशा घर कर जाती थी, लेकिन विज्ञान ने हार नहीं मानी और उम्मीद की एक नई किरण जगाई, वैक्सीन की खोज।
0: हाँ निशा, हर साल 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि HIV/AIDS के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है और वैज्ञानिक लगातार ऐसी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं जो इस बीमारी को हमेशा के लिए रोक सके।
1: दोस्तों, एड्स केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता और मानवता की परीक्षा भी है। एक समय था जब लोगों को HIV संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बना लेनी थी, उन्हें समाज से अलग कर देते थे, लेकिन आज विज्ञान और जागरूकता ने सोच बदलनी शुरू कर दी है।
0: जब भी HIV या फिर एड्स की बात होती है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि आखिर HIV क्या है।
1: HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। यदि समय पर इलाज ना मिले तो ये एड्स का रूप ले लेता है। और कुमकुम, अच्छी बात यह है कि आज चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि सही इलाज और सावधानी से HIV संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जी सकता है।
0: और इसी उम्मीद को और मजबूत करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एड्स की वैक्सीन बनाने में लगातार शोध कर रहे हैं।
1: कुमकुम, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 1998 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को HIV वैक्सीन रिसर्च के प्रति जागरूक करना और उन वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और स्वयंसेवकों को सम्मान करना जो इस देश में लगातार काम कर रहे हैं।
0: निशा, क्या अभी तक एड्स की वैक्सीन बन चुकी है?
1: पूरी तरह सफल वैक्सीन अभी भी उपलब्ध नहीं है कुमकुम, लेकिन कई रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में HIV की प्रभावी वैक्सीन जरूर विकसित हो जाएगी
0: और तब शायद दुनिया में एड्स का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल, लेकिन तब तक सबसे जरूरी है जागरूकता और बचाव।
0: HIV से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं, जैसे कि हमेशा सुरक्षित संबंध बनाएं, संक्रमित सुई या फिर सिरिंज का उपयोग कभी ना करें, केवल जांच किया हुआ रक्त ही चढ़ाएं, समय समय पर HIV टेस्ट करवाएं और सबसे ज़रूरी, संक्रमित व्यक्ति के प्रति भेदभाव न रखें,
1: क्योंकि HIV छूने, साथ बैठने, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। दोस्तों, जानकारी की कमी डर को जन्म देती है, लेकिन HIV से लड़ाई डर से नहीं, जागरूकता से जीती जाती है। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और मानवता का साथ निभाएं। जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य और मानवता की रक्षा का संकल्प लेते हैं, उसी तरह हमारे वीर सैनिक हर पल देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है।

0: रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कभी तुमने सोचा है कुमकुम कि हजारों साल पुरानी तलवारें, राजाओं के मुकुट, पुरानी पांडुलिपियां, मिट्टी के बर्तन और सभ्यताओं की निशानियां आखिर कहाँ सुरक्षित रहती हैं? कैसे इतिहास की आवाज़ें आज भी हम तक पहुंचती हैं और कैसे बीते हुए समय की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं?
3: हाँ हाँ निशा, इन सवालों का जवाब छिपा है संग्रहालयों में, एक ऐसी

0: वो जगह है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर वस्तु, हर चित्र और हर धरोहर में सांस लेता हुआ दिखाई देता है।
1: दोस्तों, हर साल 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये दिन हमें हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत को सहेजने का संदेश देता है। संग्रहालय केवल पुरानी चीज़ों का संग्रह नहीं है बल्कि ज्ञान, कला, विज्ञान और सभ्यता की जीवित पहचान है।
0: दोस्तों, जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय की यात्रा पर निकल पड़े हों। कभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में पहुंच जाते हैं तो कभी राजा महाराजाओं के शौर्य और वैभव को महसूस करने लगते हैं।
1: और कुमकुम, सबसे खास बात यह है कि संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसी कला रचते थे और किस तरह अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते थे।
0: और निशा, क्या तुम जानती हो कि दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था?
1: हाँ, सच में, यानी इंसान को अपनी विरासत संभालने की चिंता सदियों पहले से रही है।
0: बिल्कुल, और आज आधुनिक संग्रहालय तकनीक के साथ और भी आकर्षक बन गए हैं। दोस्तों, अब वहाँ डिजिटल स्क्रीन, 3D मॉडल, ऑडियो गाइड और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, जिससे इतिहास को समझना और मज़ेदार हो गया है।
1: दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई शानदार संग्रहालय हैं जो हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, जयपुर का अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय और कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, ये सभी इतिहास और कला के अनमोल खजाने हैं।
0: और ख़ास बात यह है कि हर संग्रहालय की अपनी अलग कहानी होती है। कहीं युद्धों की वीर गाथाएं मिलती है तो कहीं प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में कला की अद्भुत झलक दिखाई देती है।
1: और दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में जहाँ लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं, वहाँ संग्रहालय हमें ठहर कर अपनी पहचान को समझने का अवसर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अपने अतीत को जानना कितना ज़रूरी है।
0: बच्चों और हम युवाओं के लिए तो संग्रहालय किसी जादुई किताब से कम नहीं है। यहाँ इतिहास रटने की चीज़ नहीं रहता बल्कि आंखों के सामने जीवंत हो उठता है।
1: साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की शुरुआत 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना।
0: और हर साल इस दिवस की एक विशेष थीम भी रखी जाती है ताकि लोग बदलते समय के साथ संग्रहालयों की नई भूमिका को समझ सकें। आज संग्रहालय सिर्फ इतिहास नहीं दिखाते बल्कि समाज, शिक्षा, पर्यावरण और विज्ञान जैसे विषयों पर भी जागरूकता फैलाते हैं।
1: दोस्तों, संग्रहालय हमें सिखाते हैं कि हमारी विरासत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सबकी साझी धरोहर है। अगर हम अपनी संस्कृति और इतिहास को समझ सहेज कर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ अपनी पहचान से दूर हो जाएंगी।
0: बिल्कुल सही कहा निशा तुमने। और एक छोटी सी पुरानी वस्तु भी इतिहास का अनमोल हिस्सा हो सकती है दोस्तों, इसीलिए हमें अपनी धरोहरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने में योगदान भी देना चाहिए।
1: तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर क्यों ना हम एक संग्रहालय घूमने जाएं, इतिहास को करीब से महसूस करें और यादों के इस खूबसूरत सफर को इस गाने के साथ जी लें, दिल चाहता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, कुछ जीव नजर नहीं आते लेकिन हर जगह मौजूद हैं। हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमें स्वस्थ रखते हैं तो कुछ दुश्मन बनकर बीमारियाँ फैलाते हैं। कभी दही जमाते हैं तो कभी दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सूक्ष्म दुनिया की जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है, बैक्टीरिया की दुनिया।
3: सचमुच बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में बीमारी का डर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि कई बैक्टीरिया

0: तो हमारे सबसे बड़े सहायक हैं।
1: बिल्कुल कुमकुम, हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भोजन पचाने में मदद करते हैं, खेती में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और वैज्ञानिक तो इनकी मदद से जीवन रक्षक दवाइयाँ तक बना रहे हैं।
0: बैक्टीरिया इतने छोटे जीव होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से तो देख नहीं सकते, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एक बूंद पानी में लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं।
1: और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया पृथ्वी पर करोड़ों साल से मौजूद हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धरती पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से एक हैं।
0: बैक्टीरिया का आकार अलग अलग हो सकता है, कुछ गोल होते हैं तो कुछ डंडे जैसे और कुछ स्प्रिंग की तरह घुमावदार।
1: दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं जैसे टाइफाइड, हैजा, निमोनिया और तपेदिक यानी टीबी। ये शरीर में प्रवेश करके संक्रमण पैदा करते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हर बैक्टीरिया बुरा नहीं होता, अगर अच्छे बैक्टीरिया ना हो तो शायद हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाए।
1: बिल्कुल, और वो शरीर को ज़रूरी विटामिन भी प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने तो बैक्टीरिया की मदद से कई दवाइयाँ और वैक्सीन तक बनाई हैं। एंटीबायोटिक दवाई के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि बैक्टीरिया से बचाव कैसे किया जाए। खाना खाने से पहले हाथ धोना, साफ पानी पीना और स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है,
0: क्योंकि गंदगी में हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं, इसलिए स्वच्छता ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: और एक और महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से दवा लेने पर बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ मजबूत हो सकते हैं,
0: जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है।
1: तो दोस्तों, बैक्टीरिया केवल बीमारी का कारण नहीं है बल्कि प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: और हम बैक्टीरिया से भी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि दुनिया में हर छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है, चाहे वो आंखों से दिखाई दे या फिर नहीं।
1: तो दोस्तों, आइए हम स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें और विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को समझने की कोशिश करें।

0: दोस्तों, बैक्टीरिया की बात करते करते मुझे याद आया कि जिस तरह गर्मी बढ़ते ही बैक्टीरिया भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उसी तरह इंसानों की दिनचर्या भी पूरी तरह बदलने लगती है। सूरज देवता जैसे ही अपनी ड्यूटी पर थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, धरती पर गर्मी का मौसम दस्तक दे देता है। सुबह की हल्की धूप कब दोपहर की आग उगलती किरणों में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। पंखे की हवा अचानक कम लगने लगती है और इंसान का सबसे प्यारा रिश्ता फ्रिज और पानी की बोतल से बन जाता है।
1: दोस्तों, अपने राजस्थान में तो तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सड़कों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी हवा ने तवा गर्म करके रख दिया हो। हवा भी ठंडी नहीं होती। लोग घरों में रहने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते समय ऐसे तैयार होते हैं जैसे रेगिस्तान की यात्रा पर जा रहे हों। सिर पर कपड़ा, आंखों पर चश्मा और हाथ में पानी की बोतल।
0: और निशा, गर्मी आते ही लोगों की ज़िंदगी में कुछ अनोखे बदलाव अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि फ्रिज घर का सबसे सम्मानित सदस्य बन जाता है। ठंडा पानी किसने ख़त्म किया, ये घर का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और जो लोग सर्दियों में नहाते ही नहीं थे, वो अब गर्मी में दो दो बार नहाने लगते हैं।
1: और सर्दियों में जहाँ हम लोग धूप ढूंढते थे, वहीं गर्मियों में छांव खोजते फिरते हैं। जो लोग चाय के बिना दिन शुरू नहीं करते थे, वो अब ठंडे पानी और नींबू के शरबत के पीछे भागते नजर आते हैं।
0: लेकिन इन हंसी मजाक के पीछे एक सच्चाई भी छिपी है कि गर्मी शरीर को बहुत जल्दी कमजोर कर सकती है। इसलिए दोस्तों, इस मौसम में सावधानी बेहद जरूरी होती है।
1: और दोस्तों, गर्मी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग और व्यवहार पर भी पड़ता है। ज़्यादा तापमान से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे लू लगना, पानी की कमी, थकान, कमजोरी और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी।
0: इसलिए गर्मियों में पानी खूब पिएं, सिर्फ प्यास लगने पर नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी हर थोड़ी देर में पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और लस्सी, ये सब शरीर को बहुत ठंडक देते हैं। और कई लोग तो सुबह जल्दी काम के चक्कर में बिना कुछ खाए घर से निकल जाते हैं, लेकिन गर्मी में धूप में खाली पेट रहने वालों को जल्दी कमज़ोरी कर देती है। इसलिए थोड़ा सा दही, फल या छाछ लेकर निकलना शरीर को ज़्यादा देर तक ऊर्जा देता है। और हाँ दोस्तों, गर्मी सिर्फ हम इंसानों को नहीं लगती, जानवरों को भी लगती है। हम इंसानों के पास तो गर्मी का इलाज है। जब प्यास लगी, पानी या फिर ठंडी ड्रिंक पी ली। हमें गर्मी लगती है तो हम पूरे दिन कूलर या फिर एसी की ठंडी हवा में बैठे रहते हैं, पर बाहर गर्मी से तड़पते जानवरों का क्या, ज़रा उनका भी तो सोचिए। इसलिए अपने घरों की छतों पर चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी का बर्तन हमेशा रखें, और धूप में बैठे कुत्तों के लिए भी पानी का बर्तन ज़रूर रखें। और हाँ, अगर वो आपकी घर की छांव में आराम कर रहे हैं तो उन्हें भगाइए मत, बल्कि उन्हें आराम से सोने दें, क्योंकि आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखिए कि धूप में भूखे प्यास अगर हमें बैठे रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उन जानवरों का भी सोचिए और उनका भी ख्याल रखिए। बस इसलिए ही जानवरों के प्रति भी इंसानियत दिखाने और गर्मियों में उनकी राहत के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है।
1: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए उनके जवाब जानते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था, AI आधारित हेल्प बोट अभय को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका सही जवाब है केंद्रीय जांच ब्यूरो।
0: और आज का हमारा दूसरा सवाल था कि

0: भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्गम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? जिसका सही जवाब है राजस्थान। और दोस्तों, अब वक्त है रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने सहायक लोको पायलट पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें 11,127 पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध है। डिप्लोमा, ITI, BE, BTEC योग्यता प्राप्त उम्मीदवार 15 मई 2026 से 14 जून 2026 तक RRB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1: दोस्तों, उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट RRB.apply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

0: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत बातचीत के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जानकारी के साथ साथ ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आया होगा, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। और हाँ, इस गर्मी में अपने साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखिए। मैं कुमकुम स्वामी
1: और मैं निशा शर्मा अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही थी निशा शर्मा और कुमकुम स्वामी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आगे के कार्यक्रम।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की आज प्रस्तुति दे रही हैं मुक्ता जैन और राकेश कुमार जोशी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी इस सप्ताह के कृषि कार्य, नैनो यूरिया, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जल संसाधनों का उपयोग और संरक्षण के साथ साथ आप लुप्त उठा पाएंगे लोकगीतों का भी। ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा संध्या 7 बजे।

लोकगीतों का प्रसारण होगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर हमारे प्लेबैक से। रात्रि 10:00 जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा खेल जगत। सुनना ना भूलिएगा खेल जगत की संपूर्ण जानकारी के बारे में रात्रि 10:00। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात आप सुन पाएंगे न्यूज 8:09। रात्रि 11:00 आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार, पश्चात सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। छह बजकर के 5 मिनट पर होगा फिल्म संगीत। आज इस फिल्म संगीत में विशेष होगा एक ही गीतकार के कंपोज किए सारे गीतों को, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में होंगे एक ही गीतकार संजीव दर्शन। इन संजीव दर्शन के संपूर्ण जीवन के बारे में सुनते हुए सुनेंगे इनके रचित गीतों के बारे में। ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की

0: ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन चालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। लीजिए आज के फिल्म संगीत में हम शुरुआत करते हैं एक ही गीतकार के बारे में। बात कर रहे थे आज हम संजीव और दर्शन के बारे में। हालांकि आज हो सकता है कि आपने पहली बार ये नाम सुना हो, संजीव और दर्शन। संजीव दर्शन की जोड़ी, इनका पूरा नाम है संजीव राठौड़ और दर्शन राठौड़। इनके जीवन और उनके बॉलीवुड सफर की कहानी

कहानी संगीत विरासत और उतार चढ़ाव से भरी है। चलिए शुरुआत से जानते हैं इन दोनों भाइयों का सफर, संजीव और दर्शन। जब मैंने पहली बार ये नाम सुना श्रोताओं, तो मुझे ऐसा लगा कि संजीव दर्शन एक नाम है, लेकिन इनके बारे में जब पूरा पढ़ा तो ये लगा, बाद में पता चला कि संजीव और दर्शन दोनों भाई भाई हैं। जैसे कि नदीम शरवण की जोड़ी थी, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी थी, ठीक उन्हीं तरीके से इनकी भी एक जोड़ी है, संजीव और दर्शन। इनका जन्म मुंबई के एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सुबह की शुरुआत ही सरगम से होती थी। इनके पिता श्रवण कुमार राठौड़, जो 90 के दशक में सबसे ब्लॉकबस्टर संगीत जोड़ी नदीम शरवण, आशिकी, साजन, राजा हिंदुस्तानी फेम के आधे हिस्से थे। इनके दादा चतुर्भुज राठौड़ भी एक जाने माने क्लासिकल सिंगर थे। यानी कि घर में संगीत का माहौल होने के कारण दोनों भाइयों ने बचपन से ही हारमोनियम और तबला संभाल लिया था। पिता श्रवण कुमार ने खुद दोनों को संगीत की बारीकियां सिखाई, रिकॉर्डिंग और म्यूजिक स्टूडियोज के चक्कर लगवाए ताकि वे फिल्म मेकिंग और म्यूजिक अरेंजमेंट को समझ सकें। बॉलीवुड में इनकी धमाकेदार एंट्री हुई 1999 में। जब दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने किसी के नाम का सहारा लेने के बजाय संजीव दर्शन के नाम से अपनी स्वतंत्र जोड़ी बनाई। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला साल 1999 में फिल्म मन से। चलिए इनका एक गाना सुनने के बाद में और भी चर्चा करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम बात कर रहे थे संजीव दर्शन के बारे में। निर्देशक इंद्र कुमार अपनी फिल्म के लिए एक फ्रेश और यूथफुल म्यूजिक ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने इन दोनों भाइयों की धुनों को सुना और तो वे तुरंत एक्सप्रेस हो गए। आमिर खान और मनीषा कोइराला स्टारर मन के गाने मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, तिनक तिनक तानी और रातों रात पूरे देश में गूंजने लगी। पहली फिल्म से जोड़ी स्टार संगीतकार बन गई। करियर का सबसे बड़ा मुकाम आज की तारीख में जो आप हर एक बारात में कहीं ना कहीं वो गीत सुनते हैं, फिल्म धड़कन का वो गीत जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। मन की सफलता के ठीक अगले ही साल यानी कि 2000 में उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म आई धड़कन। निर्देशक धर्मेश दर्शन की इस फिल्म के एल्बम ने उस दौर में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक आपको मजे की बात और बताएं दोस्तों कि इनके धर्मेश दर्शन जो इनके निर्देशक रहे थे तो कहीं लोग कंफ्यूज भी हुए थे कि संजीव दर्शन और धर्मेश दर्शन कहीं ना कहीं भाई भाई हैं, जबकि धर्मेश दर्शन का पूरा नाम ही धर्मेश दर्शन था जो निर्देशक थे अपनी फिल्म के, जबकि संजीव और दर्शन दोनों भाई थे जिन्होंने ये गीत भी उन्होंने दिया और उनकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में कहीं ना कहीं गूंजती है। अल्ताफ राजा की आवाज़ में गाया हुआ वह कव्वाली गीत दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। लीजिए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की इस आवाज़ में ये गीत, फिर इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Akashwadi at 90.
1: लीजिए, तो हम बात कर रहे थे संजीव दर्शन जी के बारे में, संजीव और दर्शन जी के बारे में। जैसे अभी हमने बात की थी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये इनकी धमाकेदार

एंट्री हुई फिल्म धड़कन में सन 2000 में। इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। सफलता का दौर उनके लिए बहुत ही रोमांचक रहा। धड़कन के बाद में संजीव दर्शन की डिमांड बहुत बढ़ गई और उनके बाद में उनकी एक के बाद एक नई नई हिट फिल्में आईं, जिनमें आई स्टाइल सन 2001 में, जो कॉलेज के लाइफ को लेकर के कुछ उनके गीत हिट हुए, आवारा पगला दीवाना और हंगामा जैसी कॉमेडी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन और सुरीला संगीत दिया। इनकी चर्चा और भी करेंगे, तब तक सुनिए ये एक स्टाइल फिल्म का उनका ये गीत। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत था फिल्म स्टाइल से, मोहब्बत हो ना जाए।

0: तो ये थी संजीव दर्शन की उनकी जोड़ी के बारे में। आज का हमारा ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात $863 अरब तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: यूक्रेन और पश्चिमी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच सैन्य कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल देश का कुल निर्यात लगभग 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश का व्यापारिक समुदाय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में शुरुआती तौर पर उपकरणों में संक्रमण या दवाइयों में गड़बड़ी की आशंका है। श्री खींवसर ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 23 मई तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एम्स की टीम ने भी अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल पर आमजन का भरोसा है और प्राथमिक जाँच के आधार पर शुरुआती कदम उठाए गए हैं।
3: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीजन।
0: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष में आज विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने इस नए लोगो का लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोगो राजस्थान के जनमानस की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी वृक्ष और विधान भवन की छवियों को शामिल किया गया है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाता है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज विधानसभा के चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
4: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और

समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति प्रयासों के समर्थक रहे हैं। श्री मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया

0: मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सीबीआई की जांच में परीक्षा से पहले लीक हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के मुख्य स्रोत का भी पता चल गया है। एजेंसी ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी कोचिंग संस्थान के संचालक प्रोफेसर शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक जयपुर, दिल्ली और लातूर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस महीने की 3 तारीख को हुई यह परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए आम लोगों की समस्याओं को सुना और अनेक मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसुनवाई में आए सभी मामलों के निस्तारण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। चित्तौड़गढ़ और पिलानी 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहे। तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हीट वेव की आशंका है।
1: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा।
0: आयुष मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए आज एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। एडवाइजरी में तापघात, चक्कर आने, तेज सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षणों को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने को कहा है। इसके साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसे पारंपरिक चीजों के सेवन की सिफारिश की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1.5 महीने की नहरबंदी के बाद आज 10,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को नहरबंदी लागू की गई थी। इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, टूटी पटड़ियों की मरम्मत, रेगुलेटरों के रखरखाव और अन्य तकनीकी काम किए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटों में यह पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इससे सूरतगढ़, रावला, घड़साना और अनूपगढ़ क्षेत्र के हजारों किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई के लिए पानी मिल सकेगा। ऐसे में अब किसान नरमा, ग्वार और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में नहरबंदी का अंतिम चरण चल रहा है। एक सप्ताह तक नहरबंदी के प्रभाव से पेयजल आवक में कमी को देखते हुए स्थानीय भूजल स्रोतों से पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर के राजकीय संग्रहालयों स्मारकों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों और

जन के लिए सभी संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालयों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन के लिए लगातार काम कर रही है। जैसलमेर के दिथार हेरिटेज म्यूजियम और पाली के राजकीय बांगड़ म्यूजियम में भी आज सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विचार संगोष्ठियां रखी गई। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में इतिहास और संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्वे को बातचीत के जरिए शांति प्रयासों का समर्थन करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस साल देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी, आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। और विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी जिले की चिट्ठी में हम आप तक पहुंचाएंगे प्रशासनिक, सामाजिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों से जुड़ी खबरें। चिट्ठी में बात करेंगे ग्राम रथ अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, लू और तापघात से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों और जनगणना 2027 की। साथ ही होंगे और भी कई समाचार। चिट्ठी में सबसे पहले बात पीएम सूर्यघर योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनते बूंदी की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिले में जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। जिले में अब तक 1,134 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे रोजाना 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम है। साथ ही 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं को अब तक 8 करोड़ 5 लाख से अधिक की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है। ये योजना बिजली उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। चिट्ठी में अब बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान की। जिले भर में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की ओर से योग जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग के पीएमओ और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा के निर्देशन में बूंदी और सथूर में हाल ही में योग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में योग सत्र रखे गए। इनमें विद्यार्थियों को विभिन्न योगाभ्यास करवाए गए। योग गुरु दीपक गुर्जर ने बताया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली को सकारात्मक दिशा देने वाली भारतीय पद्धति है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। अभियान के तहत एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने रोचक अंदाज में प्रस्तुतियां देकर लोगों को योजनाओं के फायदों और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। इस पहल से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी है। एलईडी वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही संध्या चौपाल का भी आयोजन हुआ। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हुई। इस मौके पर स्वगणना प्रपत्र भरने के बाद जिला कलेक्टर ने लोगों से इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अब 16 मई से प्रगणक घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर बूंदी में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों से बातचीत की गई और उन्हें श्रमिक अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने श्रमिकों को पंजीयन प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही

0: ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री मानधन योजना के फायदों से भी अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई, साथ ही अधिकारों के हनन होने पर कानूनी मदद लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। जिले के हर कोने में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में समृद्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए डॉक्टर अनिता यादव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने जिले के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पुस्तकालय संचालकों से अपील की है कि वे पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी प्रशासन से साझा करें। उन्होंने बताया कि पांडुलिपि की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से नियुक्त सर्वेयर संबंधित स्थान पर जाकर पूरा विवरण प्राप्त करेंगे। इस ब्यौरे को ज्ञान भारतम मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बूंदी में विशेष कार्यक्रम रखा गया। माय भारत केंद्र पर हुए इस कार्यक्रम में युवाओं को नई तकनीक के साथ सामंजस्य रखते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और नॉर्वे ने बातचीत रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत करण वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहो भारत रा सामान री दिसावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर ताई पूगी। राज्य माय जबरदस्त गर्मी रो दौर, आयुष मंत्रालय हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी। और विश्व संग्रहालय दिवस रे मौके आज प्रदेश भर माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नॉर्वे हमेशा बातचीत और कूटनीति रे जरिए शांति री कोशिशां री हिमायत कीनी है। श्री मोदी आज नॉर्वे रा प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे सागे खबरनवीसा सागे बातचीत कर रहा है। दोनों देशों री ओर जारी भेड़ा प्रेस बयान माय कही जियो कि यूक्रेन और आतुनी एशिया समेत दुनिया रा न्यारा न्यारा हलका माय चाल रहा झगड़ा टंटा बीच है, फौजी कार्रवाई किनी समस्या रो हल नी है।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: बातचीत रे दौरान दोनों देशों बीच पर्यावरण और साफ ऊर्जा हलका माय ग्रीन स्ट्रेटजिक भागीदारी ने आगे बढ़ावण माथे ही सहमति बनी। इन तेज अंतरिक्ष हलका माय मदद सारू इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी बीच एक करार माथे ही सही करी ची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो है कि दुनिया री चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था और दिशावर माय बिक्री लगातार बढ़ रही है। वे आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव री वेबसाइट री शुरुआत रे मौके राखी जा कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री गोयल कहो कि इस साल भारत रा सामान री दिशावर माय बिक्री 863 अरब डॉलर रा लेवल ताई पूगी, जो लारला साल री तुलना माय करीब 5% बत्ती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहो कि चालू माली साल सारू भारत दिशावर माय बिक्री 1 ट्रिलियन डॉलर रा लेवल ताई पुगाउणो तय किन्नो है। श्री गोयल देश रा कारोबारी समुदाय रे साल 2047 ताई विकसित भारत बनावण रो लक्ष्य हासिल करण सारू पूरी मजबूती आगे बढ़वारो भरोसो जतायो।
3: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।

0: कोटारा जेके लोन अस्पताल में लारला दिना जापा वाली लुगाईयारी तबियत खराब हेवन और मौत वेजावन रे मामला में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर शुरुआती तौर इलाज रा काम में आवन वाला साजो सामान में संक्रमण या दवाइयां में गड़बड़ी री शंका जताई है। श्री खींवसर आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि इलाज रा काम में आवन वाला शंका जोग साजो सामान और दवाइयां रा नमूना जांच सारू भेजी गया है जारी रिपोर्ट 23 मई ताई आवन री आस है। वे कहो कि एम्स री टीम ही अस्पताल रो दौरो कर मामला री जानकारी लीनी है और रिपोर्ट आया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला।
1: जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है आईवी फ्लूइड जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ ठीक है स्टोरेज उसकी सही नहीं हो दैट कुड बी वन रीजन इसका।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रा सिलसिला में विधानसभा रा नुआ प्रतीक चिन्ह रो विमोचन कीनो। ई मौके वे कहो के ओ प्रतीक चिन्ह राजस्थान री जनता री सोच बतावे है। राज्यपाल कहो के ई प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा खेजड़ी रा रूंखड़ा और विधानसभा भवन रा फोटो शामिल करी गया है जो प्रदेश री संस्कृति रो दर्शाव करे है। ई मौके विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि आज विधानसभा रा चार ही ऐतिहासिक दरूजा रा राजस्थानी संस्कृति रे मुजब राखी जिया नुआ नाम रे पट्टियां रोई अनावरण करी जियो।
2: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार। ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार 5 द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई नीट पेपर लीक मामला में लारला 24 घंटा में 5 ठौड़ा छापा मार और कई खास कागजात कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कीना। जांच में परीक्षाओं पहली लीक हुआ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रा पेपर लीक हुआ रा मूल स्रोत री ठापड़ की है। एजेंसी महाराष्ट्र रा लातूर एक और कोचिंग क्लास रा निदेशक ने गिरफ्तार कीनो है। ई मामला में हाल ताई जयपुर दिल्ली और लातूर समेत देश रा न्यारा न्यारा हलकाओं 10 आरोपिता ने पकड़ी छिया है। ध्यान जोग है कि ई महीना री 3 तारीख ने भी आ परीक्षा पेपर लीक री शंका पाछे रद्द करती री ची ही। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य में पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच मौसम विभाग 19 जिला में आज अरकाल लू बाजण सारू चेतायो है। इ बीच चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका में गर्मी रो कोप रहवेला। वे बतायो कि इन दौरान सरहदी हलका और लंकाऊ उगनी हलका माए कठे कठे लू बाजण री शंका है।
3: अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग वहीं शेखावाटी क्षेत्र जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 4-5 दिन तेज हवाएं प्रभावी होंगी। तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। वहीं ज्यादातर शेष जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं इनमें तापमान 42।
0: ए बीच आयुष मंत्रालय जोरदार गर्मी और लू रा कोप न ध्यान रखता थका हेल्थ एडवाइजरी जारी कीनी है। इनमें बच्चा बुजुर्गा आस वाली लुगाइयां और खुला माए काम करन वाला मजूरा ने खास तौर सावचेती रखन बाबत कही जियो है। एडवाइजरी माए चक्कर आवन माथा माए जोरदार दर्द वेवन और बेहोशी वेवन री सूरत माए तुरंत 108 या 102 हेल्पलाइन माथे संपर्क करन री राय दी रिची है। ईसा गई लू बचाव सारू बराबर पानी पीवन और तावड़ा बचबारी राय दी रिची है। ईसा गई शरीर न ठंडो

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालो ग्रामीण भाई बहना ने राकेश कुमार जोशी
1: और आपकी बहन मुक्ता जैन राम राम, राम।
0: देखो देखो मुक्ता बहन, दो तीन दिन से देख रहा कि लाए जी की ने गर्मी सागिड़ी पड़ रही है और ये गर्मी सु सब लोग, चाहे पशु पशुपालक भाई है, पशु है, आपा हाँ ग्रामीण इलाके रहा लोग हो चाहे शहरी इलाके रहा लोग हो, सब लोग प्रभावित हो रही है। कई तो कहवा है कि गर्मी पड़नी चीज है, तो आगे मानसून जी को है, बिरो आसार जी को है।

0: वो चौखो होने की संभावना रहे। और कई लोग कह इसी गर्मी है जी की पता नहीं पर्यावरण आप असंतुलन हो रही है, बिरकरणा बढ़ रही है, तो बा गर्मी तो खतरनाक है। आ तो देखा कि भी आप ठंडक पहुंचाने खातर घर घर में एसी रो जाप तो जी का लोग बढ़ाता जा रही है, लेकिन जी का पेड़ लगना चीज़ है नहीं, वह संख्या कम होती जा रही है।
1: राकेश भाई गर्मी की बात तो आप सही क्योंकि मौसम समय गर्मी पड़ती पर अब की बार जी गर्मी नहीं लाई ज़्यादा पड़ रही है और आपा देखा कि अभी आपा ये देखा कि कदी जहाँ ज़्यादा तावड़ो पड़े नहीं तो शाम तक कहीं है कि तेज आंधी आ जाए या फिर कोई बारिश हो जाए, वो पर्यावरण को असर तो है ही। और ई मौसम में भी अपना जिका अपना काम धंधा है, अपना किसान भाई है, अपन घर की महिला है या जिका भी अपना कोई भी हाँ काम बने तो अपने रुक कौन से करना ही पड़ती। तो इन मौसम में कहीं है कि अपने कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना चाहे किसान भाई हो चाहे अपनी घर की महिला हो या बूढ़ा बढ़ेरा माइत हो या घर का पशु वगैरह हो, तो अगर आप सही बातों को ध्यान रख ला तो गर्मी से आप बच सका।
0: और सही बात आई है कि खेती बाड़ी में जब बगत पर आप कोई काम करा नहीं तो बीस अपने लाभ जो है वो सही मिले
1: सही मिले।
0: और एक खातर अपना वो चीज है कि अपने खेत में कोई फसल यदि खड़ी है तो आप अभी नियमित रूप से देखभाल करा, नियमित निगरानी रखा, निराई गुड़ाई भगत माते करा और खरपतवार सो फसल ने बचाने की कोशिश करा। बीस है कि खरपतवार जब खेत में नहीं हो सी तो फसल ने जिसका पोषक तत्व है वह सगला मिल सी और वो भी देखा कि फसल में कोई कीट है कोई रोग है मेरा लक्षण अपना नहीं दिखना।
1: और इंगे सागर सागर राकेश भाई आपने जी आपने खेतों में जी की खाद और उर्वरक और जो प्रयोग है नहीं वो भी आपने ध्यान रखना है। आपने कही है कि रासायनिक जी की खादा हुए खाद हुए बागो अंधाधुंध उपयोग को नहीं करना और मिट्टी रो समय माथे परीक्षण भी करवाना है जिसको कहीं अपन ध्यान पड़े कि खेती में कितनी खाद री कितनी उर्वरक की आवश्यकता हुए और इंगे सागर आप नैनो यूरिया है जैविक खाद है और गोबर की खाद रो भी आप संतुलित उपयोग कर अपनी मिट्टी की जी की उर्वरक शक्ति है बिन बढ़ा सका
0: और पानी रो संरक्षण करना है अपन और सिंचाई रा जी का प्रबंधन है कि बीकानेर क्षेत्र में आप देखा पानी की कमी रहे है, समस्या रहे है, तो आप जी का किसान भाई बंधु हाँ आपने पानी रो एक संतुलित और मितव्यता से उपयोग करना है और सिंचाई जी की विधियाँ हैं चाहे बूंद बूंद सिंचाई हो फंवारा सिंचाई हो बीरो उपयोग कर पड़ो और आपा पानी ने बचा सका।
1: और इंगे सागे सागे आपा उन्नत जी की तकनीका यानी कृषि में वह भी आपा इस्तेमाल कर सका हाँ जिया की उन्नत बीज है मौसम पर आधारित खेती है कृषि यंत्रा रो उपयोग है और इस आपा उत्पादन बढ़ सी और लागत भी कमा सी
0: फसल चक्र अपना सका आपा और विविधता आप खेती में कर सा नहीं तो खेतरी मिट्टी भी स्वास्थ्य चौकड़ बनोड़ो रहे और जिका कीट पतंग है वे भी कम से कम
1: और राकेश भाई इंगे सागे सागे जी पशुपालन की आप जब बात करानी तो किसान भाइया ने कही है खेती बाड़ी रे सागे सागे पशुपालन ने भी बढ़ाओ देनो है और वह आप पशुआ रो ध्यान रखे और पशुआरी जी की गोबरी जी की बोया करे भी सो आप खाद के रूप में खेती में आप भी उपयोग ले सका।
0: खेती बाड़ी करने वाला आप किसान भाई बंधु हैं तो अपन एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि धरती पर खेती बाड़ी जद ही होवेला जद अपनी मिट्टी और अपनो पर्यावरण चोखो रहेला सुरक्षित रहेला और संतुलित रहे नहीं तो आप कह सका कि धरती माते असंतुलन हो सी तो कह सका कि भगत माते मौसम नहीं आवेला और मौसम भी आवेला तो वो अणु तो इस आवेला या तो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा बरसात ज़्यादा ठंड भी सू कही है कि असंतुलन होने से अपन ये धरती पर जीवन है नहीं चाहे पेड़ पौधा रो जीवन हो चाहे जीव जंतु रो चाहे अपनो वो जीणो
1: और राकेश भाई देखो मौसम रो कोई पत्तो को नहीं कदी कहनी आंधी तूफान ओला अनेक तरह राजियां समस्या है जिसमें किसान कहीं खेती बाड़ी रो चौपट हो जाया करे तो इन वास्ते कहीं अपनी जी की सरकार है नी समय समय माथे अनेक तरह री योजना ले रही है और अपन किसान भाई रो मतलब वो है कि योजना रो पूरा लाभ लेवे जिया फसल बीमा योजना है सब्सिडी योजना है नैनो यूरिया योजना है सगली योजना नहीं बने आर्थिक सुरक्षा देसी
0: देखो फूटरी बात आप करी है और भाई बंधु इंतजार करे फूट रहे गीत रो लो सुनो बा सुनो सा सीमा मिश्रा और सीमा मिश्रा और गायडो केसरिया बालम।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है,

0: 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: तो ए तो हा संदेशार। अब देखो मुक्ता बहन, आपा किसान भाइया ने देवा एक जानकारी, क्योंकि गर्मी रो बगत है और गर्मी सूही जरूरी जानकारी है कि गर्मी रे मौसम माया आपा पशुवारी देखभाल और बियारो आहार प्रबंधन है वो किया करा, इस संबंधित जानकारी जी की है बा जानकारी लेवा आपा डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी सु और यहाँ सु बात कर रहा है संदीप पारिक। लो भाया सुनो आ एक भेंट वार्ता।
2: गर्मी की जद ऋतु आवे तो आपनो जो को पशुधन है बिने खास देखभाल की दरकार हो, और बिन वगत जे पशु पालक पूरो ध्यान नहीं देवे तो न केवल दूध उत्पादन जो को है वो कम हो जावे, बल्कि पशु जो को है वो भी परेशान रहे, जेके सु बिमे तनाव भी हो जाया करे। तो गर्मी के इन मौसम में आपा आपने दुधारू पशुओं को किन प्रकार ध्यान रखा, इन मुजब कौन कौन सी इन प्रकार की बातें हैं जका को आपा ने खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आ सगली बातें की जानकारी के लिए आज स्टूडियो में पधारा है डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग बीकानेर में। डॉक्टर साहब राम राम।
3: राम राम।
2: डॉक्टर साहब सोम पहली तो आप महाना आप बताओ कि अब आज की गर्मी पड़ रही है, इन गर्मी के मौसम में के पशुओं की खास देखभाल हुआ है और क्या करनी चाहिए।
3: हम देखते हैं कि पशुओं में अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं, और जो गर्मियों का मौसम है, खासकर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं या उत्तर पश्चिमी भारत की बात करते हैं, तो गर्मी का जो मौसम है उसमें पशु सीधे सीधे तनाव में चला जाता है, और इसके लिए पशुपालक भाई को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात कि गर्मी के मौसम में हमें हमारे मवेशियों को, दुधारू पशुओं को ठंडा और आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, उनका जो बाड़ा बनाते हैं, उनके रहने का जो स्थान बनाते हैं, उसको उचित हवादार स्थान के रूप में उसे प्रदान करें, और साथ में ही उनके खड़े होने के लिए, बैठने के लिए उचित स्थान जरूर उन्हें प्रदान करना चाहिए। साथ में ही जो उनकी जो शेड है, जो उसे हम देख सकते हैं कि छत होती है, उसे हम फूस से या फिर जूट के पर्दों से ढक सकते हैं ताकि सीधी धूप उनके ऊपर ना गिरे, जिससे वो तनाव में जा सकता है। और जो उसकी छत है उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि टिन की जो हमने छत बनाई है उसके ऊपरी सतह को हम सफ़ेद या फिर हल्के रंग से रंग सकते हैं, और निचली जो भाग होता है उसे हम गहरे रंग से रंग सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ, अपार जी आप जिक्र करो ऊपरी परत की है टैन की बात सफ़ेद रंग से करनी और निचली जगह बात गहरे रंग से, तो इनके पीछे कोई खास वजह है?
3: इसका साइंटिफिक कारण है सर। इसमें हम देखते हैं कि अगर ऊपरी सतह को आपने हल्के या सफ़ेद रंग से रंगा है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे अवशोषित नहीं होंगी छत पर, और वो एरिया जो है पशु का जो शेड है वो एकदम से गर्म नहीं होगा, ये कारण हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमें आसपास जो पशु के रहने का क्षेत्र है उसमें हमें छायादार पेड़ लगाने चाहिए, और जब दिन का सबसे गर्म समय होता है, खासकर 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, उस दौरान हम जानवर पर पानी भी छिड़क सकते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला एरिया जहाँ पर तापमान लगभग 50 डिग्री भी चला जाता है, उसमें हम फव्वारा प्रणाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से भैंसों के लिए ज़्यादा कारगर रहती है। साथ में ही हम पशुओं के लिए सुविधाजनक स्थान पर पर्याप्त संख्या में छायादार पानी के कुंड जरूर उपलब्ध करवाएं, और उसमें हम साफ़ सुथरा पानी समय समय पर भरते रहें। पशु को स्वस्थ बनाए रखने के लिए गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम उनमें कृमि नाशक दवा का इस्तेमाल करें। उनमें जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, और साथ में जो सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी लें। दूसरी बात ये कि गर्मियों के मौसम में जो बाह्य परजीवी होते हैं, जिसमें हम बात करें चीचड़ की, जू की इत्यादि, ये पशु के शरीर में इनकी तादाद बढ़ जाती है, तो निकटतम पशु चिकित्सालय में इनको मारने के

0: ये जो दवा होती है वो मिलती है, और आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब है तो आप सामान्य बात बताइए कि जगह के बारे में आपने ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा गर्मियों को जो को मौसम है, इन मौसम में अपना जगह दुधारू पशु है तो
0: जी
1: बंग खान पान को जो को प्रबंध है बी पर भी कोई अपने खास तरह से ध्यान देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। देखिए, हम खुद फील्ड में ये चीज़ हमें चुनौती के रूप में देखनी पड़ती है, क्योंकि जो दुधारू पशु है उसका सीधा सीधा जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है गर्मी के मौसम में। दूध उत्पादन कम होने के दो कारण होते हैं गर्मी के मौसम में। पहला, एक तो गर्मी में अत्यधिक तनाव में शरीर चला जाता है पशु का, और दूसरा उसका जो फीड इनटेक है, जो वो भोजन कर रहा है उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसलिए हमें आहार प्रबंधन पर गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
1: तो बीमा कौन कौन सी ऐसी बातें जगह को अपन ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए, आहार प्रबंधन में हमें उसे एक संतुलित आहार देना चाहिए। हमें जो भी, जैसे गांव वाले क्या करते हैं, खास करके कुछ भी खिला दिया पशु को, जो उनके पास उपलब्ध है उसको खिला दिया, तो ऐसा ना करें। पशु चिकित्सक से सलाह लें, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम एक संतुलित आहार बना करके पशु को दे सकते हैं, जिसकी भले ही मात्रा कम हो परंतु वो शरीर को लगे और उससे दूध उत्पादन में कोई ज़्यादा अंतर ना आए। दूसरी बात, हम देख सकते हैं कि यदि हरा चारा उपलब्ध है तो वो प्रदान किया जाए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हम थोड़ी बहुत कम रख सकते हैं परंतु जो ऊर्जा की जो मात्रा है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, उसको बढ़ा सकते हैं। पशु को हम भूसा कम से कम दें, क्योंकि भूसे को पचाने में भी शरीर के ज़्यादातर जल की मात्रा का उपयोग हो जाता है। इससे पशु जल्दी से डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। जो भी हम हरा चारा प्रदान कर रहे हैं वो खासकर लंबे जो है रूप में आता है, तो उसको हम कटाई करके दें। छोटा अगर रूप में अगर पशु खाएगा तो उसको पचाने में आसानी होगी, अधिक सुपाच्य रहेगा। गर्मियों में ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया, इनकी हानि हो जाती है दूध के द्वारा। पशु में और भी ज़्यादा कमजोरी आ सकती है और उसके दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में सरकार के द्वारा मिनरल मिक्सचर, जो हम नमक सामान्यतः बोलें, नमक जो होता है या फिर जो खनिज मिश्रण होता है वो उपलब्ध होता है, तो वो आप वहाँ पर जाएँ और पशु को उचित मात्रा में पशु चिकित्सक की सलाह के द्वारा मिनरल मिक्सचर प्रदान करें।
1: इनके अलावा एक चीज़ आप यहाँ बताइए डॉक्टर साहब कि प्रोटीन की मात्रा अपन गर्मी में कम कर देनी चाहिए,
0: जी
1: तो प्रोटीन की मात्रा कम करने को मतलब है कि प्रोटीन जैसी चीज़ें में वह चीज़ें कम देनी चाहिए, तो जी हाँ कौन कौन सी चीज़ थोड़ी सी अपन कम दे देनी
0: जैसे
1: चाहिए।
0: हम चाटे को कम दे सकते हैं, चाटा जो हो गया, या फिर जो हम खल होती है उसको कम मात्रा में भी दे सकते हैं। इसका इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इसको पचाने में भी कई बार समय लगता है और इस वजह से पशु इनडाइजेशन में जा सकता है, उसमें अपच हो सकता है, और गैस या फिर हम बोल सकते हैं जिसको आफरे की समस्या जो आती है, आफरे की समस्या आती है। और दूसरा, इसको पचाने में अधिक जल की भी आवश्यकता होती है शरीर को, इसलिए बॉडी में जितनी पानी है उसको अधिक से अधिक उपयोग पशु भोजन के पचाने में ही ले लेगा, इस वजह से वो डिहाइड्रेशन में जा सकता है गर्मी में।
1: तो आ तो बात डॉक्टर साहब आप बताइए भी खान पान में अपन है कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए।
0: जी
1: पर देखो डॉक्टर साहब गर्मी को मौसम है, कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाए करे पशुपालक का
0: जी
1: निश्चित भी, और कई बार पशु जो है वो खुद भी कोई इन प्रकार की भी चीज़ खा ले जैसे सुबह बीमार भी पड़ सके
0: जी
1: और बिना ताप घात चुका है वो
0: जी
1: गर्मी के मौसम हो जाया करे। तो जो कोई पशु ने ताप घात हो जाए तो एक आम पशुपालक ने किया ठापड़ा भी इन ताप घात है मतलब वह लक्षण कौन कौन सा हुआ है।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और तापघात के लक्षण एक डॉक्टर साइंटिफिक तरीके से अलग पहचानता है, पर एक पशुपालक भी उसको आसानी से पशु को मात्र देखने मात्र से पहचान सकता है। जैसे उसकी श्वसन दर, उसकी सांस जो लेने की जो गति है, दर है, वो बढ़ जाएगी, साथ में ही पशु के मुँह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लार गिरने लगेगी। लार गिरना सीधा सीधा लक्षण है गर्मियों में कि उसे तापघात हो गया है। साथ में ही आप देखेंगे कि उसकी जो नाड़ी होती है बहुत ही तेज कई बार हो जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। और साथ में ही बहुत ज़्यादा आप कंडीशन ख़राब होने पर देखेंगे कि पशु बेहोश भी हो सकता है। पशु में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का एक बहुत ही अच्छा लक्षण है कि आप उसकी त्वचा को यदि खींचेंगे तो त्वचा में सल पड़ जाएगा, त्वचा ढीली हो जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पशु में पानी की कमी हो गई है। इन कंडीशंस में, इन अवस्थाओं में आपको सीधे अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ती है।
1: तो डॉक्टर साहब इन प्रकार का जो लक्षण दिखे तो पशुपालक भाई ने समझ जानो चाहिए कि ताप घात का असर जो वो
0: जी
1: हो गया। तो डॉक्टर साहब मान लो इन प्रकार का लक्षण कोई पशुपालक भाई ने दिखाई दे रहा है तो बिन स्थिति में बिन अवस्था में इन ताप घात क्या बचना चाहिए के एक आम पशुपालक ने करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि

0: के जो पशु होता है वो दूर ढाणियों में मौजूद होता है और उस समय वो सही समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क नहीं कर पाता है पशुपालक, इस दौरान वो खुद क्या प्राथमिक उपचार दे सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि पशु को ठंडक वाले स्थान पर ले जाया जाए और छांवदार स्थान पर ले जाया जाए जिसमें पेड़ हमारे लिए सबसे उत्तम उपाय है इसका। यदि आसपास पेड़ उपलब्ध नहीं है तो हम जो गाय का बाड़ा है कम से कम 9 फिट की जो छत है उतना तो उसे उपलब्ध करवाएं ताकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, जो हवा का आवागमन है वो प्रॉपर सही तरीके से बना रहे। दूसरा हम कर सकते हैं कि सीधा पशु के शरीर पर जल का छिड़काव कर सकते हैं और ये कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर फंवारा पद्धति भी इस्तेमाल की जाती है। और फंवारा पद्धति से क्या होगा, सीधा हम शरीर पर पानी छिड़केंगे तो पशु का 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गीली चादर या फिर जो बोरियाँ होती हैं उनको गीला करके पशु के शरीर पर उसको ढक सकते हैं पशु के शरीर को, जिससे भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है। भैंसों में हम क्या कर सकते हैं, आसपास यदि कोई तालाब मौजूद है, जल का जो स्रोत मौजूद है, तो वहाँ पर उनको रखा जाता है और ये भैंसों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है क्योंकि उनकी त्वचा ऑलरेडी काली होती है। हर 10 से 30 मिनट के अंतराल पर 1 से 5 मिनट की अवधि के लिए शरीर पर सीधे पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। गर्मी के समय में हमें 5 से 6 बार हमें पशु को साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। पानी पीने मात्र से ही पशु को डिहाइड्रेशन नहीं होगा और दूसरी बात उसके तापमान को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ में ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि पशुओं के शरीर में खनिजों की कमी हो जाती है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए उनको मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण ज़रूर ज़रूर उपलब्ध करवाएं। तो इन सभी जानकारी के साथ में पशुपालक हीट स्ट्रेस से एक बार प्राथमिक उपचार दे लेगा और उसके बाद में वो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है।
1: तो गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन किन प्रकार से करना चाहिए, इन मुजब जानकारी दे रहा है पशुपालन विभाग बीकानेर का पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आया और पशुपालक भाइयों ने इन मुजब इतनी फूटी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान भाई, बहुत ही फूटरी सी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। आपने ध्यान रखना चाहिए कि अगर पशु गर्मी के मौसम में बीमार हो जाए तो बिंगो का ही प्राथमिक उपचार करना चाहिए। बिने भूसेरी जी जिसकी मात्रा है बा कितनी और कम दो लेकिन पौष्टिक रूप से होनी चाहिए। और बिंग अलावा जी डॉक्टर साहब बताओ कि जिको मिनरल मिक्सचर है यानी कि पौष्टिक तत्वों को जिको खजानो है, नमक पानी सबकी उचित मात्रा में अपन पशुओं देना है। तो आ जानकारी बहुत ही चौकी ही और सगला किसान भाई ये जानकारी रो फायदो ले सी। और आ जानकारी दे रहा है डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आसू जानकारी ले रहा है संदीप पारिक। तो बहुत चौकी जानकारी दी डॉक्टर साहब।
3: तो डॉक्टर साहब चौकी जानकारी दी तो एक चौको सो गीत भी यहाँ आप सुनावा और गीत आप लाया गोविंद सिंह राठौड़ गायोड़ो काली रे काली फूटरो सो गीत ऐसा लो सुनो।

अब भैंस की कवाड़ी लू भाई, भैंसा चरा हूँ जंगल में, मटको भर भर दूध पिलाऊ थन खड़ो करू जंगल में, रक्त मारी किरड़ काबर गोल घूगर हरिड़ो रमरिड़ो

बुरी भैंस को, भाई बुरी भैंस को दूध पियो गोपाल ठाकर मोटा। भाई एक डेढ़ सौ साग चाटगा, साढ़ा तीन सौ रोटा रा मारी पीढ़ काबर गोल घूगर हरिडोर मरिडोर।

बुरी भैंस को भाई बुरी भैंस को दूध पियो तो मरियल बनो मलहंगा अरनु ही बींदनी भाई नु ही बींदनी देखन लागी मोटा बना को डंगर मारी किरड़ काबर गोल घुगर अरिडो रमरिडो

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: देखो भैया, आपा पारंपरिक यूरिया जिकी है वह उपयोग पहला आपा करता, पर आजकल आधुनिक कृषि विज्ञान रे माया एक क्रांतिकारी उपलब्धि आपन हासिल हुई है, बा है नैनो यूरिया। इफको जिकी संस्था है बीर द्वारा इतने तैयार करियो है, और ये नैनो यूरिया जिकी बनी है इरे उत्पाद इरे उपयोग सो कृषि उत्पादन बढ़ियो है, और उर्वरक रे अत्यधिक उपयोग आप कम कर रहे हैं, इसो पर्यावरण में भी नुकसान कम हो रही है, और नैनो तकनीक पर आधारित जिकी आ नैनो यूरिया है आ अपने आप में एक उर्वरक है जिकरा कण जिका है बारीक है बिल्कुल सूक्ष्म कण है जिकरा कारण पौधा द्वारा यानी प्रभावी ढंग से उपयोग लियो जा सके।
3: और पारंपरिक यूरिया रो जिको उपयोग है वो अपा लंबे समय पर कृषि पर कर सका हाँ, और इंगो बड़ो हिस्सो जिको है वो मिट्टी ने नष्ट होण से बचावे है, पानी से सागे बहर बर्बाद को नहीं है, और इंगो परिणाम स्वरूप न केवल किसानों की लागत बढ़ी है बल्कि मिट्टी और जल प्रदूषण की जिकी समस्या है वह भी कम हुई है। और इरे विपरीत नैनो यूरिया पौधारी पत्तियाँ द्वारा सीधा अवशोषित भी हुए है, और नाइट्रोजन डी जिकी आवश्यकता है बिना भी यदि कुशलता से पूरा करे।
2: नैनो यूरिया सो सबसे बड़ो लाभ वो है कि पर्यावरण ने कम से कम नुकसान पहुँचावे, अपनो पर्यावरण इसो सुरक्षित रहे, और मिट्टी में अनावश्यक जिका भी रासायनिक तत्व है वे भी कम इकट्ठा होया करे, भूमि री उर्वरता ने लंबे समय तक बनाए रखने का तरह नैनो यूरिया जिकी है बहुत कारगर उपाय करे, और इरे उपयोग से जल प्रदूषण की समस्या भी काफ़ी हद तक आप दूर कर सका, क्योंकि पानी में घुलपर और बहने रे बजाय ए पौधा द्वारा अधिक से अधिक उपयोग में लियो जा सके।
3: और राकेश भाई, आज की तकनीक है नी बा किसान रे आर्थिक इतने भी बहुत ही मोटो फायदो देवे, क्योंकि इनकी लागत कम, इनकी जिकी मात्रा है नहीं बहुत ही कम, मतलब अपन आवश्यकता हुए, और जिका उर्वरक की जिकी लागत है बा कमी आवे, इंगे सागे

0: फसल की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है, सुधार हुआ है और विशेष रूप से बा क्षेत्र जिका जल और मिट्टी की गुणवत्ता पहला से ही सीमित होया करे और बटे इनकी उपयोगिता बढ़ी है। जी आपन राजस्थान रो जो सूखो क्षेत्र है बीमे को बहुत महत्व है।
1: बस वैज्ञानिक लोग सलाह देवे कि आपन एक निर्धारित मात्रा में ही उपयोग करना चीज है और इस कहीं अपन टिकाऊ खेती है बिना बढ़ावा मिले। आधुनिक कृषि प्रणाली में वो नैनो यूरिया उपयोग अपन एक महत्वपूर्ण हिस्सों बन चुके है और आने वाले समय में इरो उपयोग और बढ़ेगा।
0: कहने रो मतलब वो ये है कि नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र में एक नई नई तकनीक रो प्रतीक है जिको उत्पादन ने बढ़ासी, पर्यावरण रो संरक्षण करसी और लागत में भी सुधार करसी। तो तीनों जिका उद्देश्य है एक ऐसा के पूरा हो रहे तो इरो उपयोग अपने करना चाहिए।
1: और अब देखो बारी है एक फूटे से गीत री काली कलायण उमटी निर्मला पारिक रो गायोडो फूट रो सो गीत ऐसा लो सुना।

0: तो भया आज आप सुनियो चोकी चोकी जानकारी सुनी चोखा भजन हरजस सुनिया और अब काल फेरू मिलसा नई जानकारी नई गीत रे सागे आज घड़ी सारो करे के कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो सीख देव आपरे साथी राकेश कुमार जोशी
1: और आपकी बहन मुक्ता जैन ने
0: मोकला मोकला
1: राम राम, राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे राकेश कुमार जोशी और मुक्ता जैन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत में पहली आवाज सुनिएगा बालकृष्ण वैष्णव की।

सीमा अनिल सहगल की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म मैंने प्यार किया से, और लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत की इस कड़ी में अगला गीत सुनिएगा, फिल्म कोयला से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दिल से। आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत का अगला नगमा और ये अंतिम नगमा सुनिएगा फिल्म जुर्म से। कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए लोक संगीत का। लीजिए लोक संगीत में पहली आवाज सुनिएगा सीमा मिश्रा की।

0: सरस्वती देवी की आवाज़ के साथ ही लोक संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम

0: बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एक मत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर

0: स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India,

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म शराबी से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगली आवाज़ सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की और उनके साथ में है आशा भोसले जी। लीजिए सुनिए ये गीत फिल्म यादों की बारात से।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं और समय है पुरानी फिल्मों से गीत का। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिएगा पुरानी फिल्मों से गीत में। पहला गीत होगा लता मंगेशकर की आवाज़ में, आप ये गीत सुनिएगा फिल्म आम्रपाली से।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म शर्मिली से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। लीजिए अगला गीत होगा फिल्म एक दूजे के लिए। लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में ये गीत होगा फिल्म एक दूजे के लिए। सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अभी आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। लीजिए अगला गीत सुनिएगा अमर प्रेम से। किशोर कुमार की आवाज में होगा ये गीत आप लोगों के लिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म आम्रपाली से। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजने को है। अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनिएगा खेल जगत।

0: खेल जगत सुनने वाले सभी खेल प्रेमी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं, जिसमें एक है पैरा एथलीट जगसीर सिंह से नवीन सिसोदिया की बातचीत और दूसरे जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से नवीन सिसोदिया की चर्चा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करें इस बातचीत के साथ जो नवीन सिसोदिया ने की पैरा एथलीट जगसीर सिंह से।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जगसीर सिंह जी। आप पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इनके परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत के लिए अनेकों गोल्ड और सिल्वर और जाने कितने ही मेडल्स जो इन्होंने हासिल किए हैं, भारत को बड़े बड़े गेम्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इनके अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं 2010 में, महाराणा प्रताप अवार्ड इन्होंने हासिल किया 2017 में, पैरा एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने 2010 में गोल्ड जीता था। आप कैप्टन भी रहे हैं पैरा ओलंपिक गेम्स के, आप फ्लैग बियरर रहे हैं 2012 के लंदन पैरा ओलंपिक्स के, आपने पैरा नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके अंदर अभी तक आपका जो रिकॉर्ड है वो कायम है और कोई उसको तोड़ नहीं पाया है। लॉन्ग जंप में आपने 6.9 मीटर का जो जंप है वो लगाया है। वर्तमान में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जगसीर जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जगसीर जी। आपके जो मेडल्स हैं उनकी तो लिस्ट काफी लंबी है, ये तो मैं कुछ ही बता पाया हूँ। आपने भारत का जो नाम है वो विश्व स्तर पर काफी ऊंचा किया है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पैरा ओलंपिक या जो पैरा एथलेटिक्स है वो क्या चीज है।
2: पैरा स्पोर्ट्स है जो एक जितने भी हमारे दिव्यांग

0: जो लोग हैं उनके लिए एक तरह से अलग ओलंपिक से अलग गेम्स होते हैं, जिसके अंदर उनके जैसे हाथ है जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, और जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका इवेंट होते हैं। जैसे जिनका हाथ नहीं है उनके उनमें हाथ वाले आते हैं, जिनका पैर नहीं है उनमें पैर वाले आते हैं, जिनमें ब्लाइंड है उनका ब्लाइंड की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक स्पोर्ट्स है, इन पैरा स्पोर्ट जब शुरू हुआ तो उनको एक अलग सा माहौल देने के लिए शुरू किया गया था। बाद में जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता गया, अब जहाँ ओलंपिक होते हैं वहीं पैरालंपिक होते हैं, और पहले ओलंपिक होंगे फिर पैरा शुरू होते हैं, ऐसी एशियन गेम्स है फिर पैरा एशियन गेम्स है। और आज गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प कर रही है उनको, पूरा एक समान दर्जा है, भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, सारी सरकारें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब कोई हैंडीकेप हो जाता है उसकी ट्रेजरी होती है तो उसको अपने जीवन यापन में या उसका अपने वहाँ से निकलने के लिए बहुत समय लगता है उसको, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। और पैरा स्पोर्ट्स पैरालंपिक ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप दुनिया में बहुत अच्छा बन सकते हैं। और आज बहुत सारे पैरालंपियन हैं जो उदाहरण बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे जैसे मैंने खुद ने भी इंडिया रिकॉर्ड किया, जब मैं खेला और मेरा 1993-94 के अंदर 8-9 साल का था जब मेरा एक हैंड चला गया था।
1: जी, हम
0: और
1: सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कौन सी ट्रेजेडी रही जिसके चलते आप जो हैं ये हाथ के साथ आपके जो चोट लगी वो किस प्रकार हुआ, बताइए थोड़ा।
0: मेरा पुरुषोत्तमवास फतेहगढ़ गांव है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ही, तो वहाँ से जब मैं खेत में खाना लेने जा रहा था तो 11,000 वोल्टेज जो तार थी तो उसको जब नीचे गिरी पड़ी थी, हाथ से उठाया तो मुझे पता नहीं था करंट था उसके अंदर, पूरा हाथ मेरा जल गया। जलने के बाद कुछ लोगों ने उठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो 2 से 3 महीने मेरा इलाज चला, फिर हाथ मेरा काटना पड़ा। तो हाथ जाने के बाद घर पे आया तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, बहुत छोटी एज थी नहीं पता था, तो फैमिली में काफ़ी उदास रहते थे भी क्या होगा आगे जाके। धीरे धीरे स्टडी शुरू हुई, उसके बाद जब मैं +2 के बाद हमारे द्रोणाचार्य कोच आरडी से मिला तो उन्होंने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पैरालंपिक के जो दिव्यांग बच्चे हैं वो खेलते हैं, उनका कंपटीशन होता है, वो जीतते हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। तो फर्स्ट मैं टूर्नामेंट 2006 के अंदर बेंगलोर में खेला नेशनल में, जिसमें मैंने 4 गोल्ड जीते और इंडिया का बेस्ट एथलीट बना, वहां से मेरी शुरुआत हुई।
1: जी, आपने बताया कि 93 में 1993 में आपके साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद में आपने 2006 में एक कोच के कहने पर आप मोटिवेट हुए और आपने इनमें भाग लेना शुरू किया। बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ट्रेनिंग जो है वो शुरुआत कैसे की और कहाँ से की।
0: एक्चुअली शुरू में मैं पुरुषोत्तमवास से जब घर से कॉलेज तक मैं रनिंग करके जाता था तो 10-10, 20-20 किलोमीटर रनिंग करनी, तब मेरे कोच द्रोणाचार्य आरडी सिंह जी, उनका हॉस्टल चलता था, उसने बोला कि आप बहुत मेहनती हैं, तो उनको मैंने स्टेट के बारे में बताया, मैं स्टेट खेला था, तो उन्होंने बोला स्टेट कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, यदि आप थोड़ी मेहनत करो तो। देवेंद्र जाजड़िया जो पद्मश्री अवार्डी थे वो भी NMPG कॉलेज में थे पहले मेरे से, उन्होंने उनका उदाहरण दिया भी, उनके भी एक हाथ नहीं था, उनकी भी लैट लगी थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, तो मैं रात दिन तैयारी करने लगा, अपने हॉस्टल में रखा उन्होंने मुझे 6 महीने साल। और 2006 में जब मैं खेला तो उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई, वहीं से मेरा आयरलैंड के लिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2006 में, जुलाई के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल टूर जो जुलाई में खेला उसके अंदर मेरा 16 जुलाई को मेरा गोल्ड आया लॉन्ग जंप का, और सबसे बड़ी बात है कि 16 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है।
1: आपको जन्मदिन का जो तोहफा है वो गोल्ड के रूप में मिला।
0: हाँ जी हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल टूर के अंदर।
1: उसके बाद में आपने इस खेल को और आगे बढ़ाने के लिए और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग में कोई बदलाव किया या आप वहीं पर ट्रेनिंग करते रहे?
0: देखेंगे किसी के अंदर यदि डेडिकेशन या कोई इच्छा शक्ति अच्छी है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर ये चीज़ें बहुत थी, मुझे कोई परमात्मा का आशीर्वाद था, मैंने और ज़्यादा मेहनत करी आके। जब मैं ग्राउंड जाता था उससे पहले दलिया बना के जाना, अपना डाइट तैयार करके जाता था, 4-4 घंटे टिब्बों के सैंड रनिंग में ट्रेनिंग होती थी, वेट ट्रेनिंग, सीढ़ियाँ, सब ट्रेनिंग चलती थी, तो आके मैंने डाइट खा के सो जाता था, शाम को फिर ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि उससे मेरा ताइवान के लिए सिलेक्शन हुआ आगे 2007 में, नेशनल में फिर 3 गोल्ड आए मेरे 2007 के अंदर, तो वहाँ भी मैं ताइवान में 2 गोल्ड जीते वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियन बना और बेस्ट एथलीट बना वर्ल्ड का। तो मुझे लगा कि जो मैंने टाइम दिया, समय दिया, तो 2007 में मेरा दिल्ली कैंप था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, वहीं मैं रात दिन अपना ट्रेनिंग किया।
1: हम आपसे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी जगह से ट्रेनिंग ली है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आपने ट्रेनिंग ली, क्या आपने सरकारी ट्रेनिंग प्राप्त की या फिर आपने प्राइवेट कोचिंग ली, किस तरह आपने अपने खेल को और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य किया?
0: 2006 के बाद नेशनल में जब मेडल आए तो मुझे भारतीय खेल प्राधिकरण बैंगलोर से कैंप मिला, मुझे वहां मैं कैंप में रहा। फिर 2007 में मैं भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंप में रहा, साई के अंडर में दिल्ली के अंदर। 2007 के बाद बेंगलोर में मेरा कैंप लगा,

0: वहाँ कंठेरवा स्टेडियम के अंदर, वहाँ भी भारत सरकार द्वारा सारा पूरा खर्चा बहन किया जाता था। 2008 में बीजिंग पैरालंपिक गेम्स थे तो मैं काफी लंबा टाइम रहा उस टाइम। फिर मुझे पटियाला इंडिया कैंप चलता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, वहाँ रहा। तो वहाँ पूरा डाइट का शेड्यूल है, पूरा मसाज का है, सोना बात है, स्टीम है, गवर्नमेंट का मसाज का है, पूरा रहता है और बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं। तो उनका मुझे पूरा फायदा मिला क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से था जहाँ इतनी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था स्पोर्ट्स का। वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड जो इंटरनेशनल इवेंट का होता है वहाँ मुझे वो मिला, वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका। वहाँ पूरा बॉक्स जैम्प है, जहाँ स्टडिंग जैम्प है, बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट थे, जिससे रात दिन मेरा 4 बजे उठने का शेड्यूल, रात का सोने का, मैं कभी फ़ोन यूज नहीं करता था उस टाइम, ना मेरे पास फ़ोन था। तो बीजिंग में मैंने 6.97 लॉन्ग जंप किया वहाँ ट्रेलो के अंदर। फिर पटियाला मैं कैंप में रहा काफ़ी टाइम। फिर बीजिंग से पहले मुझे 2 महीने के लिए इन्होंने मलेशिया शाह आलम भेज दिया गया इंडियन कैंप के लिए, वहाँ ट्रेनिंग कैंप बीजिंग आया। वहाँ मेरी काफ़ी इंजरी थी तो अच्छा नहीं हो पाया पैरालंपिक्स में, मैं काफ़ी उदास हो गया था। इंडिया आने के बाद मैंने बिल्कुल हौसला छोड़ दिया था, तो मैंने कहा मैं बीएड करने जाऊँगा। तो फिर देवेंद्र जाजड़िया आए थे हनुमानगढ़, वो बोले कि स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, कुछ ही हो जाए। फिर मैं बीएड करने चला गया, कोसा बोले कोई बात नहीं, अब टाइम है अपने पास। तो 2009 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। फिर देवेंद्र भाई साहब आए, वो बोले कि अब वर्ल्ड गेम्स आ रहे हैं 9 के अंदर, बेंगलोर खेलेंगे अपने साथ दोनों। फिर हमने वर्ल्ड गेम्स की तैयारी शुरू करी, मैंने 6.70 करके नया एशिया का उस टाइम रिकॉर्ड किया, इतनी था, तो गोल्ड जीता। फिर दोबारा मैं उस गेम के अंदर आया। फिर मुझे दिल्ली जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे कैंप मिला लंदन में। 3 मंथ के लिए लंदन चले गए हम लोग। तो 10 में सबसे गोल्डन टाइम रहा मेरा, क्योंकि जुलाई के अंदर एशियन ऑल स्टार मीट थी दिल्ली के अंदर, तब मेरा गोल्ड आया। फिर अगस्त में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, डिक्लेयर हुआ, उससे बहुत हौसला मिला उस चीज़ से। उसी साल मैंने अगस्त में अर्जुन अवार्ड मिला, सितंबर में मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर विल पावर एक अलग ही थी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो उसी साल फिर नॉटिंगम थे मैनचेस्टर के, सितंबर के अंदर लास्ट में, वहाँ दोनों गोल्ड जीते। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स थे 3 से 14 अक्टूबर 2010 को, वहाँ मेरा सेमीफाइनल आउट हो गया था मैं। उसकी कमी मैंने एशियन गेम्स में पूरी करी, मेरा गोल्ड आया, सिल्वर आया। वहाँ भी हमारे जो इंडियन एवेंसी वाले वहाँ रोज आते थे, तो वो बोलते थे भी किसी का गोल्ड आए तो हम नेशनल एंथम हमें सुनने को मौका मिले, क्योंकि जिस कंट्री का गोल्ड आता है वो नेशनल एंथम हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो वहाँ पूरी एशियन टीम में एक सिंगल गोल्ड आया था मेरा
1: जी।
0: और नेशनल एंथम बजा, उन्होंने मुझे एक वॉच गिफ्ट करी थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, वो आज ही मेरे पास रखी है। तो उनको वो बोले बड़ी खुशी मिली है कि हमारा नेशनल एंथम आज झंडा चढ़ा है और राष्ट्रगान बजा है, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि नहीं होती। एक आर्मी मैन जो रात दिन हमारे से भी ज्यादा एक शहीद होता है, उनको वो ड्यूटी देता देश के लिए, एक खिलाड़ी है कि बाहर अपना मेडल जीत के और राष्ट्रगान और तिरंगा हमारा फहराता है, तो एक प्राउड मोमेंट था उस टाइम। हम बता नहीं सकते कि इतना उस पॉडियम पे खड़ा हो कितना फील हो रहा था।
1: और एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि कुछ जो खिलाड़ी तैयारी करते हैं वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन रेस्ट की तरफ पूरा ध्यान नहीं रखते, तो रेस्ट इसमें कितना जरूरी होता है?
0: मैंने बताया कि पहले अच्छी ट्रेनिंग, फिर अच्छा डाइट, फिर एक्टिव रेस्ट। यदि आप अच्छी डाइट खा के 2 घंटे सो लो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। हर सैटरडे को हर खिलाड़ी को मसाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने हमारे टिश्यू थकान होती है वो मसाज से दूर हो जाती है। मसाज के 24 घंटे के बाद हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, 24 घंटे रेस्ट देना होता बॉडी को, उसके बाद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। और स्टीम बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर, यदि हमारे पास स्टीम नहीं है तो मसाज तो हर जगह मिल जाती है, मसाज तो हम किससे करवा सकते हैं, घर पे भी बाहर भी। तो खिलाड़ी को जैसे कोई गाड़ी या सर्विस है तो वो उसको अपनी बॉडी का खुद को ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस खिलाड़ी बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, वो अपनी इस पे चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी बहुत बोलता हूँ कि मसाज बहुत जरूरी है 1 वीक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल इंसान वो भी करता रहे तो वो भी स्वस्थ रहता है
1: जी।
0: मसाज ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है
1: जी। आपने जो छोटी छोटी बारीकियां बताई है, मैं ये चाहूंगा जो छात्र अभी या जो खिलाड़ी अभी तैयारियां कर रहे हैं वो इन बातों को सीखें और अपनी तैयारी को और ज्यादा निपुण बनाएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो खेल है जंप का, जो है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप आपने बताया, ये किस तरह से होता है, इसके लिए क्या विशेष तैयारी आप करते हैं?
0: लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जरूरत नहीं होती है, वो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 12 में वो खिलाड़ी करते हैं। इसके अंदर वेट ट्रेनिंग मेन रहती है, जिम का रहता है, जैसे हाफ स्कर्ट है, बॉक्स जंप है, हर्डल्स है इसके अंदर। और ज़्यादा टाइम जो पिच के अंदर बीतता है, जो लॉन्ग जंप पिच बनी होती है उसमें ब्रॉड जंप हो गए, बॉक्स जंप हो गए, उसके ऊपर हर्डल रख के ज़्यादा उसी पे है। सीढ़ियाँ है, 1 लेग से जंप है, बाउंडिंग है, होपिंग है इसके अंदर जो करते हैं, मतलब जंपिंग छोटी छोटी एक्सरसाइजें ज़्यादा होती है, मतलब पावर के लिए और स्पीड के लिए की जाती है। इसमें इंड्योरेंस का इसमें थोड़ा कम रहता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं 1500 उनके लिए ज़्यादा इंड्योरेंस का मैटर रहता है, शॉर्ट कम रहता है। इसमें जंपिंग वाली जितनी एक्सरसाइजें हैं ज़्यादा वो ऐड करते हैं हम लोग।
1: जगशीर सिंह जी, हम आपसे अंत में एक सवाल जरूर पूछना

0: कहेंगे कि यदि कोई खिलाड़ी खेल को ही अपना करियर के रूप में चुनना चाहे तो उसके लिए क्या संभावनाएं होती है?
1: खेल में या चाहे सामान्य खिलाड़ी है, चाहे पैरालंपिक खिलाड़ी है, जितने भी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के या राजस्थान के दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि पहले जैसा नहीं है। आज स्पोर्ट्स का बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। हनुमानगढ़ में पहली बार सिंथेटिक ग्राउंड अभी बजट में अनाउंसमेंट किया राजस्थान सरकार ने। बड़ी खुशखबरी है कि 8 करोड़ का जहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में सिंथेटिक ग्राउंड बनेगा, बहुत बड़ी बात है। अब राजस्थान सरकार खेल निदेशालय बना रही है, और 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा तो स्पोर्ट्स का एक अलग ही बनेगा बोर्ड, तो उसमें भी खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। हमारा राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी स्टेट में गोल्ड जीतता है उसको 1 लाख का केस प्राइज दिया जाता है,
0: जी
1: और सिल्वर जीता 50,000 रुपया, और ब्रॉन्ज मेडल जीता 30,000 रुपया। ऐसा ही नेशनल में है। नेशनल में यदि गोल्ड जीता है 2.5 लाख, और यदि वो सिल्वर जीतता है तो 2.5 लाख, और 1.5 लाख रुपया ब्रॉन्ज मेडल भी है। खिलाड़ियों को समय समय पर ये राशि मिलती रहती है, और यदि क्योंकि डाइट का मैटर रहता है, खिलाड़ी को डाइट पैसा मिलेगा तो डाइट खाएगा खिलाड़ी
0: जी बिल्कुल
1: उसका है। गवर्नमेंट ये, अब पहले नहीं था, अब देखो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है खिलाड़ी, उसको डायरेक्ट आउट ऑफ टर्नमेंट नौकरी है। कुछ नहीं करना, उसको एक फॉर्म भरना है और 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है, और उसके
0: आपके
1: अंदर
0: कहने का मतलब, अगर कोई खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज भी जीत जाता है तो उसको डायरेक्ट नौकरी जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है?
1: बिल्कुल सर। मेरे साथ बहुत सारे खिलाड़ी है, जूनियर है, जो नेशनल लेवल पे खेले हैं और मेडल आया उनका लगे हुए हैं। बालाराम है, संतोष है, बहुत सारे रजनी है, ये सारे नेशनल मेडलिस्ट हैं, इनका नाम लिए मैंने, जो हनुमानगढ़ के, और ये सारे सरकारी नौकरी लगे हुए आईएलडीएस की पोस्ट पे आज। और 56 डिपार्टमेंट दिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, और 56 डिपार्टमेंट में कोई भी इनकी इच्छा के अनुसार जो दिव्यांग खिलाड़ी उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। वो इतनी हेल्प इतनी सरकारें कर रही है, तो मैं कहूँगा अभी आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, और जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो हौसला बिल्कुल भी नहीं हारे, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे।
0: जी जगशीर जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी बातें बताई। हम चाहेंगे कि आपकी बातें सुनकर जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा फाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे और भारत के लिए कोई और जो मेडल है वो हासिल करेंगे। आप भी इस खेल से जुड़े रहें और लोगों को इस खेल की अच्छी जानकारी दें और भारत का जो नाम है इसी तरह रोशन करते रहें। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: दोस्तों, ये थे पैरा एथलीट जगशीर सिंह, आपसे भेंट कर रहे थे नवीन सिसोदिया। आइए अब सुने जूडो कोच डॉक्टर शेर सिंह से आप ही की चर्चा।
0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, खेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे व्यक्तित्व को भी दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति खेल से जुड़ा है तो वो अपने जीवन में निश्चित रूप से अनुशासन का पालन करता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर वो ध्यान देता है और खेल खेलने से ही खेल भावना का निर्माण होता है और आपके व्यक्तित्व को जो है खेल निखार देता है। इन्हीं खेलों में से एक खेल है जूडो। जूडो खेल के बारे में बात करने के लिए हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शेर सिंह को। आप 5th डैन ब्लैक बेल्ट हैं जूडो में, कॉमनवेल्थ में मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2018 में। ब्रांड एम्बेसडर आप रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्वीप आइकॉन जिसको कहते हैं। इंटरनेशनल जूडो के अंदर इन्होंने कई सारे जो शोध पेपर हैं वो भी इन्होंने छपवाए हैं। 1995 से लेके आज तक ये स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में जूडो कोच के पद पर कार्यरत हैं और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से जहाँ भी जूडो से संबंधित कमेटियाँ अगर जाती है, पैनल्स जाते हैं, उनमें ये सदस्य के रूप में जरूर पहुँचते हैं और ए ग्रेड के इंटरनेशनल रेफरी हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शेर सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: कभी बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर शेर सिंह। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे जूडो खेल क्या है, कहाँ से आया है?
3: जूडो खेल एक जापान का खेल है
0: जी।
3: सबसे पहले डॉक्टर जिगारो कानो जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 1860 में एक जुजुत्सु जो मार्शल आर्ट थी उसमें उसको अच्छी बातें लॉकिंग और चौकिंग को रखकर उसको रख लिया और दूसरी चीजें छोड़ दी। जूडो एक जबरदस्त गेम है, बढ़िया टेक्निक थी उनको रखा और दूसरों को उनको रखा, जैसे एक बहुत अच्छा गेम इन्होंने तैयार कर दिया
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जूडो कब शुरू किया, कब आपका लगाव इससे शुरू हुआ?
3: सर, मैं 87 में ही स्टार्ट किया तो

0: सबसे पहले हमारे गुरुजी राजेंद्र सिंह बिश्नोई जो साई कोच थे गंगाधर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने वहाँ जूडो मेरे गंगा सिंह स्टेडियम में सिखाना शुरू किया।
1: आपके मन में कैसे आई कि मेरे को सीखना चाहिए?
0: मैंने कई बार टीवी में देखा तो मुझे ऐसा लगा भी जूडो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहता था, इससे यदि मैं सेल्फ डिफेंस करूँगा तो ये मुझे अच्छा रहेगा। तो मैं हालांकि बेसिकली मैं रेसलिंग से था और कबड्डी और रेसलिंग खेलता था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो साई के चीफ कोच डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिश्नोई थे वो और देवेंद्र सिंह जी, इन्होंने जूडो के बारे में मुझे बताया, फिर मैं इनसे सीखा और 87 से मैं जूडो खेल के 88, 90, 91 में मैं राष्ट्रीय और यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला। उसके बाद मुझे एक ललक सी लगी, मैं जूडो ही में परमंगत होना है, तो इसके बाद लगातार आज तक जूडो खिला रहा हूँ और खेलता हूँ।
1: आप 95 में आपने राजस्थान सरकार में एक फिजिकल टीचर के रूप में आपने ज्वाइन किया, तो उस वक्त भी आपने बच्चों को जूडो सिखाना शुरू किया?
0: तो मैंने 93 में NIS पटियाला में जाकर अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया, जिसे हमारे चीफ कोच जे जी शर्मा जी और टोनी ली जो चाइन इंडिया के कोच थे वो उन्होंने से मैंने सीखा, और 94 में मैं डिप्लोमा लेके घर आया। फिर उसी दौरान राजस्थान सरकार ने सर्विस के लिए कुछ पोस्टें निकाल रही थी और मेरा 94 में मैंने फॉर्म भरा और फरवरी 95 में मेरी पोस्टिंग वहीं हो स्कूल में होगी, तो तब से लेकर आज तक उसी स्कूल में हूँ और वहीं सेवा कर रहा हूँ।
1: क्या बात है। उसके बाद में जैसे आपने जूडो की बात की, तो जूडो में आप कब राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो तो राजस्थान सरकार में हुई, फिर आप कोच के रूप में किस तरह उभर कर आए?
0: सर इसमें क्या, राज्य सरकार तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में ही मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जितने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाती हैं ये उनके तत्वावधान में होता है, तो मैं उसके बाद 95 के बाद मैंने NDIU नेशनल डिप्लोमा इन ऑफिशिएटिंग उसके तहत मैं ए ग्रेड में पास हुआ। 96 में सबसे पहले मैं इम्फाल में गया और इम्फाल में गया और वहाँ मैंने रेफरशिप स्टार्ट की। उसके बाद मैंने टीमें जाती हैं ओपन के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, स्कूल के लिए भी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो अलग से एक भारत सरकार खेल मंत्रालय चलाता है, तो उसमें भी मैं राज्य सरकार की ओर से राजस्थान एसोसिएशन की ओर से मैं कोच के रूप में प्रतिनियुक्त होकर जाता रहा, जिससे मैं मेरा आगे जुड़ाव और बढ़ता गया।
1: जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जैसे हम सुनते थे जूडो खेल के रूप में तो है ही, लेकिन इसको आत्मरक्षा के रूप में ज्यादा देखा जाता है, तो जूडो और ताइक्वांडो जो है इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है?
0: सर जूडो सबसे पुरानी जो जूडो कराटे थी 1972 के बाद जूडो कराटे अलग कर दी, ताइक्वांडो कुंग फू थांग था ये इसकी एक मार्शल आर्ट की वेराइटी है। ठीक है बहुत बढ़िया है ताइक्वांडो में, लेकिन उसमें पंचिंग है किकिंग है, लेकिन जूडो एक बहुत ही शालीनता गेम है, ऐसे एक गेम है, तो जूडो के खेलने से भी लड़कियों के लिए आजकल इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे क्या कोई भी शोधे इनको घेर लें उसको ये एक कुछ ही पल में टेक्निक सीखकर तो उनको उनसे बचा जा सकता है, इसलिए जूडो एक सेल्फ डिफेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है जिसमें तकरीबन जो टेक्निक है वो जूडो की ही इसमें यूज होती है।
1: जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जूडो खेलते वक्त क्या चोट लगने की संभावना भी रहती है?
0: नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है देखने वाले को, जूडो खेलने से चोट नहीं लगती, क्योंकि जब हम बच्चा 10-11 साल से हम खिलाते हैं तो उसको गिरने की पहले ही हम ऐसी फॉलिंग सिखाते हैं जिससे क्या वो बच्चा परिपक्व हो जाता है, और उसकी साइड लैंडिंग ऐसे करवाती हैं कि यदि वो हाथ पे गिरेगा तो उसके सारा हाथ जो उसका शॉक ऑब्जर्व कर लेता हाथ, तो हम उसके गिरने की टेक्निक ही ऐसी उनको सिखा देते हैं जिससे उनको चोट नहीं लगती। और जूडो में कोई चोट नहीं लगती, हाँ जूडो वाला चोट मार सकता है, उसको चोक कर सकता है, उसको लॉक करता है, लॉकिंग की बहुत टेक्निकें हैं, चोकिंग 10-12 सेकंड के लिए वो चोक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद अपने कुछ भी कर सकते।
1: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो कौन सी उम्र से वो शुरू कर सकता है?
0: सबसे पहले हम 9-10 साल का बच्चे को लेते हैं, उसको सब हम जिमनास्टिक की सारी एक्सरसाइज खाते हैं जिससे क्या वो बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी हो जी, 10-11 साल से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा को वहाँ वेट ट्रेनिंग भी होती है सबको, लेकिन छोटा बच्चा ओवरलोड हो जाता है, हम उसको वेट ट्रेनिंग नहीं देते, धीरे धीरे धीरे उसको टेक्निक्स सिखाते हैं, जैसे क्या वो जैसे जैसे बच्चों के साथ सीखता है तो 2-3 सालों में

0: वो सारी एक्सरसाइज करने लग जाता
1: जी,
0: है।
1: जैसे आपने बताया कि अगर 9-10 साल का बच्चा आपके पास आए तो आप सबसे पहले उसको जिम्नास्टिक्स की कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें जो आप उनको सिखाते हैं, और किस तरह से आप उसको 9-10 साल के बच्चे को ट्रेन करते हैं, आप विस्तार से बताइए।
0: सबसे पहले हम बच्चा जब नया आता है उसको सब उसको पहले 1-2 दिन क्लास लगाते हैं भी ऐसे बच्चे, उसको हम मोटिवेशन करते हैं भी, तू ऐसे बनेगा तो अच्छा होगा, नेशनल इंटरनेशनल पर तेरा नाम चलेगा। तो बच्चा क्या सबसे पहले रोलिंग स्टार्टिंग, फ्रंट रोल और बैक रोल, इसमें काफ़ी प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई बच्चे आते हैं फ्रंट रोल करते हैं क्या बैक रोल, उनका नेक दर्द या पेट की जो ये ओब्लिक मसल होते हैं ये दर्द करने लग जाते हैं।
1: जी
0: तो बच्चा धीरे धीरे धीरे उसको हम लोड देते हैं, उसके बाद वो केमी है जो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, वो कैसे गिरना है, जैसे हिप कैसे लैंडिंग करेगी, और जो अपनी टांगे हैं उसका क्या एंगल होगा, और जो अपना ठोड़ी है वो कहाँ पीछे सिर कितना उठाना, ये उसको हम बारीकियों से उसको सिखाते हैं। तो
1: जी
0: उसे जैसे वो नीचे बैठता है पहले उसे हिप लगती है, फिर वो स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पर टांगे उसकी 45 डिग्री एंगल से 90 तक जाते बीच में रखते हैं, और सिर पीछे उठा होता है ऐसे गिरता गिरता, वो जैसे ही सीख जाता है तो वो उसमें हम उसको फिर उसको टेक्निक भी, जैसे पहले शोल्डर थ्रो देना है उसको, फिर कमर के हाथ में हिप थ्रो देने हैं, ये धीरे धीरे सिखाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि जब जब तक आदमी खेलता तो सीखता ही रहता है।
1: जी, भारत की अगर हम बात करें जूडो के अंदर, तो आप क्या स्थिति देखते हैं खेल के दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि ये खेल ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में और अन्य भी जो इंटरनेशनल स्तर के जो चैंपियनशिप्स होती हैं वहाँ पर ये अधिसूचित है,
0: हाँ जी
1: तो भारत की इसमें क्या स्थिति है?
0: सर, भारत में आजकल भारत सरकार खेलों के बारे में बहुत ही अच्छा भी रिस्पांस दे रही है, भी बड़ी बड़ी एकेडमी खोली हुई हैं। जैसे सबसे पहले GSW में जो औद्योगिक घराना है जिंदल स्टील, उन्होंने खोली हुई है। उसके बाद भोपाल साई भारतीय खेल प्राधिकरण ने बहुत बड़ी एक अकेडमी खोली है। इम्फाल में
1: जी
0: बहुत बड़ी अकेडमी खोली है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है।
1: जी
0: तो उसके बाद वहाँ पर वो बहुत अच्छी डाइट और बहुत ही अच्छे कोचेज, जैसे मैं बताऊँ JSW में फॉरेनर कोच हैं, और अहमदाबाद में संस्कार धाम है एक जगह, वहाँ पर भी फॉरेन कोच जॉर्जिया के कोच रख रखे हैं। इसी प्रकार
1: तो
0: भारत के
1: ये
0: जो,
1: सभी जो आपने बताई ये संस्थाएं, ये भारत सरकार द्वारा
0: हाँ
1: मान्यता प्राप्त हैं
0: बिल्कुल, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के ही, खेल मंत्रालय के नीचे ही आती हैं।
1: ये सारी?
0: और हाँ, और उनमें बड़े 10-10 कोच और बड़े हाई परफॉर्मेंस कोच रख रखे हैं, और फॉरन और जो औद्योगिक घराने हैं JSW है, इन्हों ये भी फॉरन कोच रख रखे हैं जो बड़े ओलंपिक मेडल हैं, भारत के खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और तैयार करते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
1: कुछ हम खिलाड़ियों का नाम जानना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अच्छा कर रहे हैं।
0: हमारे अभी लेंथोई है, अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आई है। हमारे एक लड़का है हर्ष है वो, और अवतार सिंह अभी ओलंपिक पिछला खेल के आया था, ओलंपिक खेल के वो अच्छा है। तो लड़के बहुत है सर, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है जी, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। कोचिंग के लिए जॉर्जिया में सेंटर बनाया है, वहाँ जाके भी प्रैक्टिस करती हैं,
1: जी
0: और अभी जापान भी JSW की टीम जापान जा रही है, वो भी अभी दूसरी बार जा रही है, वहाँ भी 10-10 15-15 20-20 दिन की ट्रेनिंग कैंप लगे। ओलंपिक से पहले भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि ये जो अपना ओलंपिक इंडिया में हो रहा है तो उसमें भारत ओलंपिक में खेले और मेडल जीते।
1: बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि भारत गोल्ड मेडल तक लेकर आए, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी इस खेल से जुड़ा हुआ है उसको अपनी फिटनेस और रूटीन में क्या विशेष चीजें ध्यान रखनी चाहिए?
0: लग लग सर, आजकल तो हम बड़ी हाईटेक फिटनेस है सर,
1: जी
0: बड़े बड़े जिम हैं, लेकिन आम आदमी के लिए या आम खिलाड़ी के लिए, हम बच्चों को रनिंग देते हैं, रनिंग के साथ साथ वो उसको एक्सरसाइज ऐसे वो फिटनेस के लिए जंपिंग जंपिंग ये बाइसेप ट्राइप्स के लिए पुशअप पुलअप ये देते हैं रनिंग, और जिम के लिए ट्रेड मिले हैं आजकल, तो फिटनेस के लिए आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है
1: और
0: आजकल
1: डाइट,
0: बता।
1: डाइट की अगर हम
0: हाँ
1: बात करें तो
0: डाइट सर, आजकल जैसे बड़े बड़े सेंटर हैं उनके लिए तो डॉक्टर हैं, वो कितना आप मिनरल लेना है, कितना विटामिन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, वो सब उसके अनुसार चलता है।
1: जी
0: जो हमारे सेंटर है जो जैसे चलते हैं गंगानगर कर्णपुर जयपुर, इसमें जो मेरे कोचिज है वो डाइट के लिए आजकल प्रोटीन का बड़ा रिवाज चलता है, वो लेते हैं लड़के प्रोटीन
1: जी
0: सप्लीमेंट का बहुत रिवाज, वो आजकल बना देते हैं अब इतना आजकल आ जाता है, लेकिन डर ये लगता है कि उस प्रोटीन में

0: गलत ना हो
1: जी बिल्कुल, उसकी शुद्धता बहुत
0: हाँ
1: जरूरी
0: शुद्धता
1: है।
0: बहुत जरूरी है।
1: हाँ डॉक्टर शेर सिंह, हम आपसे अब आखिर में यही जानना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी जूडो में जाना चाहते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं या सिर्फ आत्मरक्षा के रूप में भी इसको सीखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा यही संदेश है कि बच्चे लड़के या लड़कियां जूडो जरूर खेलें, जिससे क्या है सेल्फ डिफेंस में और वो फिटनेस में, वो जूडो में खिलाड़ी ना बने भले ही, लेकिन सेल्फ डिफेंस खेलें जिससे आत्म रक्षा जरूर करें।
1: जी
0: और हमारे, मैं ये थोड़ी ये भी बता दूं, हमारे सेंटर के 5-6

0: भी गया था ब्रम्पटन में, वहाँ पर मेडल, गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है।
1: क्या बात है।
0: और अभी लड़का एक सेलेक्ट हुआ है, मेरे साथ जा रहा था ताशकंद के लिए, तो हमारे तीन चार लड़के और मैं, गगनदीप को और एक लड़की दक्षिण कोरिया में गई हुई थी, तो
1: जी
0: हमारे लड़के गंगानगर जिले के वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
1: बिल्कुल, ये
0: नाम रोशन कर
1: गर्व
0: रहे।
1: की बात है हमारे लिए। डॉक्टर शेर सिंह, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और खेल से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, ये था खेल जगत का आज का अंक, जिसमें आपने दो भेंट वार्ताएं सुनी, एक थी पैरा एथलीट जगसीर सिंह से और दूसरी डॉक्टर शेर सिंह जूडो कोच से नवीन सिसोदिया की बातचीत। खेल जगत के लिए आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति, आलेख और वाचन रोहिता शर्मा का।

अभी आप हमारे जयपुर केंद्र से सुन रहे थे खेल जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब समय है सुगम संगीत गजलों का। लीजिए आज की पहली गजल सुनिएगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए अगली गजल सुनिएगा खुर्शीद अली खां की आवाज़ में।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत गज़लों का ये नगमा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।